0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट यूके ऑफिस 03001237474 कोट.org.uk।

0: God the Eternal, the uncaused cause of all that exists. He begets not, and neither is he begotten, and there is nothing that could be compared with him.
1: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
2: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज

0: the Shaper. To him belong the names most beautiful. All that is in the heavens and the earth magnifies him. He is the Almighty, the All-Wise.
1: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
2: होशियार रहें, कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: when the dunya was the punishment for Adam alayhi salam. A quote from Imam Hassan al-Basri.
1: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
2: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
3: Oh, Hillary.
4: I was going to use newspaper display advertising.
5: But
4: it costs £10 per inch.
5: And that's too expensive.
4: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
5: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
6: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
8: Assalamu alaikum and welcome to all my listeners. Here are we once again with the show on Spire FM, and the show is called Family Matters. As we have previously discussed about lots of things and families and family matters, we discussed about communications and then we discussed about the responsibilities. Ab, मैं आपकी होस्ट अफशा और मेरे साथ हैं हाजरा. तो चलिए हाजरा, आज हम जब बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, ठीक है, तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि दोनों को आपस में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहिए, ठीक है. तो आपका क्या ख्याल है, ये हमारा कल्चर तो है, ठीक है, कुछ चीजें इसमें कल्चरल आ जाती हैं, कुछ चीजें इसमें रिलीजन प्रोस्पेक्टिव से आ जाती हैं, और एशियन एक डिफरेंट कल्चर है, यूरोप एक डिफरेंट कल्चर है,
9: इंटायरली
8: डिफरेंट है. तो आज हम बात करते हैं अरेबियन एंड मिडल ईस्टर्न कल्चर. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सिलसिले में?
9: ओके अफशान, थैंक यू सो मच और वेलकम एवरीवन जो भी सुन रहे हैं हमें इंस्पायर एफएम 105.1 से. 0777948182 इज द नंबर दैट यू कैन ड्रॉप योर मैसेजेस ऑन. एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक रिगार्डिंग द प्रोग्राम दैट यू हैव लिसन्ड सो फार हमें जरूर बताएं, बिकॉज योर कंट्रीब्यूशन, योर फीडबैक इज द वन थिंग दैट आर प्रोग्राम इज गोइंग टू ग्रो ऑन Inshallah. Or as we proudly say that this program is going to relate to every one of you out there, whether you are a single parent, whether you are living in joint family, whether you are a teenager, whether you are from any different race, culture or background, this program is going to relate to you. Or jaise Afsha aapne pucha ke humne apna last episode mein humne डिस्कस किया था कि एशियन कल्चर में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डिवाइड करते हैं. तो बिकॉज वी हैव सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें अरेबियन कल्चर भी आता है, जिसमें अफ्रीकन कल्चर भी आता है. तो अरेबियन कल्चर में जैसे दे आर बिगर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज, और उसमें क्योंकि the families, the children are living so close by, to usme responsibilities, especially on female again, they are huge, taking care of the children, taking care of the household, and then extending family relationships, grandparents, uncles, aunts, they are living close by. Or hospitality is one of the part of Arabian culture, that they are very hospitable. They are generous and they are amazingly hospitable. So jab aap, you are belonging to a hospitable culture, to usme you have a slightly extra responsibility on your shoulders when you are having your friends over or you are having your family over your place. So aap, you must be having quick ways to set a table and the, or the dinner or some meal for your guests.
8: बिल्कुल, उसमें तो जितनी बड़ी फैमिली होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतना ज्यादा आना जाना होता है, उतनी बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, और उसमें आप बेसिकली सुपर वुमन बन जाते हो. क्योंकि विद इन आवर्स, जैसे अगर एक घंटा है, दो घंटे हैं, और आपको 10 डिशेस तैयार करनी है, और आपने ना सिर्फ डिशेस तैयार नहीं करनी, अपने घर को मेंटेन करना है, अपने मेहमानों के बैठने की जगह बनानी है उनके लिए. और हमारे यहाँ का कल्चर है ना, मेहमान आएंगे तो अच्छे बर्तन निकालेंगे जो कि सदियों से किसी ना किसी अलमारी में पड़े होंगे
9: और निकालेंगे. और इसके साथ साथ मेहमानों को खिलाना भी है कि आपने, यू हैव टू मेक श्योर दैट द गेस्ट्स आर वेल फेड.
8: हाँ, आप डाले ना, आप खाए ना, कबाब ले ना, बिरयानी ले ना, यू आर द होस्ट बट विद एन एक्स्ट्रा ड्यूटी और लाइक प्लेटिंग एवरीथिंग इनटू एवरीबॉडी. ठीक है, और ये एक नेचुरल कल्चर. अच्छा, मजे की बात ये होती है, बालों का तो साथ है, आप 10 चीजें खिला लो, लेकिन समटाइम्स लाइक यू नो मियां को इतना, तुमने उनको कबाब तो पेश ही नहीं किया था, वो तो यहाँ पड़े हुए.
9: दे हैव लेफ्ट हंग्री, व्हाई इज दैट सो.
8: तो ये एक हमारे कल्चर्स का हिस्सा है. इसकी खूबसूरती भी है ना, उसकी खूबसूरती ये है कि जब आपके घर कोई आता है, आप उसको अच्छे से बिठाते हो, अच्छे से खिलाते हो, उसकी इज्जत करते हो, तो ये आपके बॉन्ड को बहुत, आपकी फैमिली के बॉन्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी कर देता है.
9: अगेन अफशा, आई वुड से दैट विद गुड कम्युनिकेशन, विद गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अमंग ऑल द फैमिली मेंबर्स, इट इज पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट गुड कम्युनिकेशन. एंड अगेन, जब आप अपना एक म्यूचुअल इंटरेस्ट बना लेते हैं फैमिली की हैप्पीनेस को, बच्चों की प्रोग्रेस को, बच्चों की वेलबींग को, अपनी फैमिली की वेलबींग को, और इफ यू आर सेंट्रलाइजिंग ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ योर फैमिली मेंबर, तो आपका आपका जो एंड रिजल्ट होता है दैट इज वेरी पॉजिटिव. कि आपका फिर हर फैमिली मेंबर एक विन विन सिचुएशन पे होता है कि आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, ही इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, सो एवरीबॉडी इज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे.
8: बिल्कुल, क्यों नहीं. आप खुद देखें, हम लोग कहीं पे जाते हैं, किसी के घर भी मेहमान बन के जाते हैं, और अगर वो हमें अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करता, या अगर वो हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं करता, या अगर वो हमारे, वैसे हम तो थोड़े से वो भी होते हैं ना कि हमें तो डाल के नहीं दिया प्लेट, वो डोंगा दो रखा हुआ था, डोंगा तो हमारे सामने रखा ही नहीं, डिश तो हमारे सामने रखी नहीं, तो हम डालेंगे कैसे. ठीक है, तो यस, इट मेक्स अ डिफरेंस. You are being seen and you are being heard. ठीक है, तो ये नहीं होता कि आप सिर्फ खिला रहे होते हैं, बेसिकली वो जब आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे होते हैं, इट्स कम्युनिकेटिंग. ठीक है, आप उससे बात करते, आपके जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग होता है, टेकिंग केयर होती है, वो उस वक्त सामने आती है. आप कनेक्टेड होते हैं.
9: लेकिन ऑन द कंट्री, उसमें एक और चीज भी है अफशा, एंड बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड से दैट देयर इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम आवर साइड टू ऑल आवर लिसनर्स, के वी डू अप्रोच कल्चर एंड रिलीजन, एंड वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू एवरीवन ऑफकोर्स. सो वी जस्ट वी डू शो आवर रिस्पेक्ट टू एवरी कल्चर एंड एवरी रिलीजन आउट देयर.
8: हाँ बिल्कुल, हमारे लिए हर चीज जो है तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, हम ऑनर करते हैं. बस बात ये होता है कि ये चूंकि फैमिली है ना, और मैं और हाजरा फैमिली है, तो हम इस में हर वो चीज डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारी फैमिलियों से रिलेट करती है, या जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हम लोग को फेस करने पड़ते हैं, या बच्चों की परवरिश, या हमारे घर के कुछ ऐसे मामला जहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ बात करने की जरूरत है. तो ये वो फैमिली मैटर्स शो है जहाँ पे हम खुल के सब कुछ बोल रहे हैं, उस चीजों पे बात कर रहे हैं जो कि हम लोग ने महसूस की हैं, हम लोगों ने देखी हैं, हम लोगों ने रियलाइज की हैं, एक्सपीरियंस की हैं. तो आप और आई एम 100% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग भी इन सब चीजों से रिलेट करते होंगे. तो हमें आपकी फीडबैक का, आपके क्वेश्चंस का, आपकी लाइकिंग का, हर चीज का इंतजार रहेगा. और वो आप हमें कॉल करके और हमारे व्हाट्सएप पे करके बता सकते
9: 07779481822. और जिन्होंने अभी हमें जिस ऑडियंस ने अभी हमें, चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप घर पे कुकिंग कर रही हैं, वेदर यू आर अ टीनेजर लिसनिंग टू आवर शो और आपने अभी ट्यून इन किया है, तो यू कैन ड्रॉप अस अ मैसेज, यू कैन कॉल अस एंड गिव योर फीडबैक. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट अ टॉपिक टू बी इंक्लूडेड इन आवर शो द फैमिली मैटर्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. वी आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्लूड ऑल योर मैसेजेस एनोनिमस और विद आइडेंटिटी, व्हाटएवर यू वांट टू, हाउएवर यू वांट टू डू इट, वी आर गोइंग टू इंक्लूड इट. और टेकिंग इट फर्दर अफशां, जब हम कल्चर्स की और रिलीजन की बात करते हैं, तो जो हमारा एशियन कल्चर है और जो हम मिडिल ईस्टर्न या अरबिक कल्चर में देखते हैं कि जो हमारा एक कम्युनिकेशन का एक लेवल होता है पेरेंट्स के साथ या एल्डर्स के साथ, तो इफ़ यू आर इंगेजिंग इन फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, इट्स अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन. बट वट एल्डर्स और योर पेरेंट्स आर थिंकिंग दैट यू आर आर्ग्यूइंग विद देम,
8: There is always a chance of that. ठीक है, हमेशा इसका खतरा तो रहता है. हम सारी चीज में होती है, मैंने अभी हमने पहले डिस्कस किया था कम्युनिकेशन पे. अगर आपकी कम्युनिकेशन गुड है तो वो समझ जाएंगे. लेकिन जब भी आप बात करें अपने एल्डर्स के साथ, आप उनसे इख्तिलाफ करते हैं, ठीक है ना, आप उनकी बात से एग्री नहीं करते. You don't have to be rude. You don't have to be very loud. देखिए, मैंने पहले भी कहा था respect और respect में एक बहुत thin line होती है.
9: Yeah, there's a very thin line.
8: बहुत thin line होती है. कभी कभी हम हाजिर जवाबी की कोशिश में कि यार हमें ज्यादा पता है, हम वो thin जो respect की line है उसको हम cross कर जाते हैं. हमें अपने mind में उसको रखना चाहिए. पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने में या डिस्कशन करने में देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. यू जस्ट नीड टू वॉच आउट फॉर योर टोन, फॉर योर वे ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर द बेस्ट थिंग टू डू इज वेरी पोलाइट, अंडरस्टैंडेबल बट फर्म. इफ यू थिंक यू आर यू हैव द राइट टू मेक अ डिसीजन, बी अ फर्म पर्सन, नॉट टू बी रूड, नॉट टू बी आर्ग्यूइंग, नॉट टू बी बीइंग मिसबिहेव्ड, बट जस्ट फर्म. A low tone, a soft tone, and a firm tone makes more difference than ladai, jhagda, unchi awaaz.
9: Yeah, but everything in its place, like the respect element and the low tone and everything, the parents or the elders, they have a perception in their mind if they're that if their decision is being challenged, the other person is talking back to us.
8: I think in that case, agar aapke samne koi aisi situation aati hai ki aap baat kar rahe hain aur aapke parents annoy ho rahe hain ya offend ho rahe hain ki wo samajh rahe hain shayad ye hamari baat se argue nahi kar rahe, stop. Us mauzu ko udhar hi chhod de, theek hai, step back, change the topic. Aap log aaram se kisi aur cheez pe baat kar le. याद रखें कि जिस वक्त एक एज होती है आपके पेरेंट्स की, जिन्होंने आपको बड़ा किया, आपको पाला, आपकी शादियां की, अब वो उस मकाम पर आ गए हैं जहां पे उनका बिहेवियर एक बच्चे जैसा होगा. आप बच्चे के साथ जिद करेंगे, बच्चा आपके साथ जिद करेगा.
9: एंड यू डेफिनेटली हैव टू कंसिडर दैट जनरेशनल गैप, जिसमें एक कम्युनिकेशन गैप भी डेवलप हो जाता है, कि वो दैट इज नॉट covered in most of the cases.
8: बिल्कुल,
9: क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जो जनरेशनल गैप की वजह से आता है, वो आपका बहुत कम केसेस ऐसे मैंने देखे हैं जहां पर पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में वो गैप कवर हो जाता है. इट्स देयर,
8: यूजुअली इट स्टेज, यूजुअली इट स्टेज. हमारे बच्चे कहते हैं अम्मी आपको पता नहीं, मतलब इट्स अ कॉमन थिंग. हम उनको सब कुछ सिखा के समटाइम्स अपने बच्चों से कहती हूँ, बेटा हमने आपको इतना बड़ा किया है, वी नो. लेकिन दे थिंक के दे नो. तो इसी तरह जैसे जैसे आपके बड़े हो, आप बड़े होते जाते हैं, यू थिंक यू नो, लेकिन उस वक्त यस राइट. आजकल की जनरेशन है, आजकल जो नॉलेज है, आजकल की जो आपको जो है तो एक्सपोजर है, वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली आपके पेरेंट्स से. फिर वही बात आ जाती है कि यू डोंट नीड टू बी लाउड, यू डोंट नीड टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, यू डोंट नीड टू बी हार्श, यू जस्ट नीड टू बी वेरी सॉफ्ट, वेरी काइंड, लो टोन्स एंड फर्म. ये वो चीज है और इसमें कम्युनिकेशन है. अगर आपका कम्युनिकेशन आपके पेरेंट्स के साथ अच्छा है, यू आर गुड टू गो.
9: ठीक है. सो कमिंग टू अनदर डिफरेंट कल्चर, दैट इज द इंग्लिश कल्चरल पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक कि जब when they are involving their children from a very young age into household chores and putting responsibilities, light responsibilities on their shoulders until they grow up, what do you think about that? Is it helping a child to take responsibility at the end of the day when they grow up, or it is just burdenizing them?
8: Well, agar main apne perspective se baat karun, the thing is, every culture has some good and some bad things. ठीक है ना, हमारे कल्चर में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ बहुत बुरी हैं. ठीक है, इसी तरह इस कल्चर में भी कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत तो शायद मेरे हिसाब से वो सही नहीं है. देखिए, आप एक बच्चे के ऊपर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारियां डालने के साथ साथ आप उसको गाइड भी करें. और जिम्मेदारियां जब जाने डालते हैं तो उसके साथ साथ एक बाउंड्री भी क्रिएट करें. होता क्या है, आप एक बच्चे को छोटे छोटे काम कर रहे हैं, आप उसको पैसे दे रहे हैं, आप उसको ट्रीट दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देख रहा है, पूरी भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है, अर्न भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ आप उसके ऊपर चेक जरूर रखें. अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आप उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन साथ उसको सही और गलत का फर्क भी बताते रहें. क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बच्चे को फ्री हैंड दे देते हैं, या आप समझते हैं कि यार नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब हर तरह की हैंडल कर लेगा या कर रहा है, इवन ही इज लाइक अ माइनर और टीनेजर, ठीक है, अगर टीनेजर है तो आप उसको कहते हैं नहीं यार, ये बाहर जाके तो जॉब करता है, ये पैसे कमा रहा है, कीप अ चेक, कहाँ जॉब करता है, कितना अर्न करता है, कैसे लेके आता है, कहाँ स्पेंड करता है. यस, ही हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा ली है, ही इज पेइंग फॉर हिज एक्स्ट्रा खर्चे और ही इज लाइक बीइंग अ वेरी नाइस चाइल्ड, लेकिन इज ही गेटिंग द मनी अकॉर्डिंग टू व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है, इज यो जिन दोस्तों के साथ वो जा रहा है, आर दे सेफ, आजकल के तो एनवायरमेंट में आपको पता है ना. तो यस, बिल्कुल, यूरोप में ये होता है कि बच्चा 16 साल का होता है, जॉब कर रहा है, 18 साल का होता है, घर छोड़ के चला जाता है.
9: तो व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू जस्ट सेड दैट इफ यू आर पेइंग हिम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाउसहोल्ड चोर्स इन रिटर्न टू डूइंग हाउसहोल्ड चोर्स, इज ही गोइंग टू गेट पेड व्हेन ही इज एक्चुअली स्टेपिंग इन टू द प्रैक्टिकल लाइफ फॉर ऑल दोज हाउसहोल्ड चोर्स, जब उसको अपने घर के काम करने पड़ेंगे तो ही और शी इज नॉट गोइंग टू गेट पेड फॉर दोज जॉब्स. तो इज इट लाइक सेंसिबल फॉर अस टू पे फॉर दोज, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज इट बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ फैमिली. ओके, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर लिविंग हेयर, दे ऑल्सो शेयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट एट अ सर्टन एज दे शुड बी डूइंग दीज फ्यू थिंग्स.
8: वही बात आ गई, मैंने कहा जब आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ देते हैं, तब आप उनको सही और गलत भी बताते हैं ना. ठीक है, छोटा बच्चा है, उसको इनकरेज करने के लिए आप चलिए अगर पैसे नहीं देते, आप गिफ्ट देते हैं, लेकिन एक सर्टन एज पे आएगा जब वो बच्चा टीन एजर में होगा, यानी जैसे मेरा बच्चा जब 10 साल का हुआ था, ठीक है, उसको उसको पैसे मिलने बंद हो गए थे, उसके बाद उसको मैंने पैसे नहीं दिए, बल्कि उसको मैंने ये कहा कि दिस इज योर पॉकेट मनी, आई शिफ्टेड the every chore money into a monthly allowance of pocket money. उसको मैंने कहा तुम अच्छे बच्चे हो, तुम ये सारे काम करोगे, this is your pocket money. So situation changes. He is getting paid monthly now for doing everything instead of being every day या रात क्यों कहती है weekends पे या उस पे क्या तुमने ये किया. He is not getting any stars, but he is being appreciated. मतलब उसको
9: तारीफ के लिए. Yeah, just a little bit of incentive is always good for everyone.
8: Number yes, when he comes to you. बिल्कुल, जब वो teenage में आया, ठीक है, तो pocket money तो already उसको मिल ही रही थी, लेकिन उसके ऊपर responsibilities बढ़ाते गए, और साथ साथ आप बच्चे को बताते हो कि बेटा this is your life experiences.
9: This is going to benefit you for the rest of your life.
8: बिल्कुल. और सारी बात है बच्चा अंडरस्टैंड करता है कि जब आप उसको बताते भी हो, आप उसको समझाते भी हो कि जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तुमने घर के काम भी करने होंगे, लेकिन सारी बात है तुम्हें कोई पैसा तो नहीं देगा, ठीक है, बट बिकॉज यू आर वर्किंग यू आर अर्निंग योर ओन मनी, बट यू आर हेल्पिंग योर स्पाउस या घर के काम में, या तुमने जिम्मेदारियां डिवाइड की. और दिस वन मोर थिंग, क्योंकि वो बचपन से एक जिम्मेदारियां लेके बड़ा हुआ है ना, तो उसके लिए कोई अनोखी बात नहीं होगी, अजीब सी बात नहीं होगी.
9: So this is how you make your children responsible when you start at a very young age.
8: Huh?
9: When you start not exactly huge responsibilities, but a little bit of something with every growing phase.
8: बिल्कुल. You table लगा दो, बर्तन उठा दो, dishwasher खाली कर दो. This is where I begin. और I remember my daughter, she was about 7 years old when she made her first fruit salad. और मैं उसको छुरी नहीं दे सकती थी, मुझे डर लगता था. तो मैंने उसे बनाना जो थे ना, तो वो उसको काटा उसने, एंड शी यूज्ड दिस बटर नाइफ. मैंने कहा ये बटर नाइफ से ना इसको काटो बनाना को एंड मेक योर फर्स्ट सैलड. यस, एंड आई बॉट लाइक प्री मिक्स सैलड उसके लिए लेके आई थी, सो
9: शी मिक्स्ड ऑल अप,
8: हाँ, ताकि वो सारी चीजें डाले. देन शी वेंट ऑन हर यूट्यूब टू फाइंड अ रेसिपी फॉर द सैलड ड्रेसिंग. शी डिड दैट एंड वी अप्रिशिएटेड, और फिर उसको हमने छोटा सा गिफ्ट दिया, एंड उसके देन इट बिकम्स हर. सो एवरी डे नाउ इट्स बिकम हर ड्यूटी टू, वो सलाद बनाती है, ठीक है. यस, एंड शी वॉज 6 years ओल्ड व्हेन सिक्स क्लास में थी जब उसने पहली दफा खाना बनाया था, ठीक है. और आई सेंड दिस फूड दैट शी मेड टू माई फ्रेंड, उसके मैंने घर भेजा और वो खुद देख के आई कि आंटी आज खाना मैंने बनाया है.
9: Wow, she must be so proud of herself.
8: And so yes, this makes them proud, and they know that we do things, we can do it. तो बात ये होती है कि यू हैव टू टेक स्टेप वन बाय वन. आप बच्चे को सिखाते हो, बताते हो, पढ़ाते हो, समझाते हो. देखिए, इस दुनिया में कोशिश करना हमारा काम है.
9: एग्जैक्टली.
8: ठीक है, सिखाना हमारा काम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है अपनी फैमिली को अच्छी चीजें सिखाना. आज मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे जी आसमान से उतरे हैं या दे आर द सुपर परफेक्ट चिल्ड्रन. नो, बहुत सारे बच्चे हैं, दे आर अमेजिंग, ठीक है. लेकिन हाँ, मुझसे जितना हो सकेगा, जितना उनको समझाना चाह सकती हूँ, मैं समझाऊंगी
9: बेस्ट
8: ऑफ दैट. तो हर, एंड ट्रस्ट मी, हर पेरेंट इज डूइंग द सेम, दे आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट दे कैन, ठीक है. अनसीन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है. अगर हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो हमसे गलती हो सकती है. हम बच्चों को स्पेस नहीं देंगे तो हमसे गलती हो सकती है. हम अपने स्पाउस को वो नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, तो हमसे वहां भी गलती होती है.
9: There is always a margin or a room to rectify if you think that you have done anything that was not right at that moment. There is always a room for rectification.
8: Always.
9: Apologize. African culture, we always think the whole Africa as one culture. which is not true, because so many different countries in Africa, and every country has their own culture, has their own roles and responsibilities that they have in their household. But there is one common thing that goes throughout Africa, and their most common phenomena that goes around is Ubuntu. That is, I am because we are. Okay, so this tells us about your individual, okay, and how you form a family, and how you become that individual because of the support of that family.
8: हाँ, वो आपका एक वो हो गया ना, हम और वी.
9: Exactly.
8: ठीक है, I and we, हम सब इकट्ठे हो गए, ठीक है. और आपका it means कि यानी आप belong करते हो, आप exist करते हो because of us.
9: And how beautiful is that? के क्योंकि the environment makes you.
8: बिल्कुल.
9: The environment of the house, because it's your first school that you go to, your house. So it makes you, okay. So you are made by the environment you are in. You are made by the people you are living with. Okay, you are made by the family. You are made by the culture that you are living in. So the idea of I am because we are, it certainly is quite valid ke ek individual se community banti hai, or if you make a responsible citizen, if you make a responsible person jisko apni rights and responsibilities ka pata hai, to they are going to go do good, they are going to do wonders when they are going out in the community.
8: Bilkul isme koi shak nahi, aur yahi kaha jata hai ke insaan ki sabse pehli dars ka uski maa ki god hoti hai. तो अगर एज अ मदर आज हम अपने बच्चों को स्पेशली बेटों को भी हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएंगे जो आगे लेके उन्होंने चलनी है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इससे हम एक बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग फैमिली क्रिएट करने में मदद करेंगे. अब अगर मैं अपने बच्चे को आज बिठा के हर चीज प्लेट में डाल के दूंगी, कल उसकी बीवी आएगी तो कहेगी ना कि मेरी सास ने क्या मेरी चीज हवाले की है.
9: Times have seriously changed. Mm-hmm. They have changed. Okay, when we as soul sisters talk about women empowerment, ठीक है, तो हम सबको यही encourage करते हैं ना कि find a side hustle for yourselves, find something that you enjoy. ठीक है, और अगर आप अपनी enjoyment के काम से अगर थोड़ा सा side में थोड़ा सा earn कर रहे हैं तो that is not a harm at all.
8: नहीं नहीं,
9: ठीक है,
8: बल्कि ये तो ज्यादा बेहतर है कि वो एक होता है ना कि आप हर वक्त अपने मियाँ की वजह से क्रेडिट कार्ड निकालो, जरा खर्चा करना है, ठीक है, इट गिव्स यू सम स्पेस, इट गिव्स यू सम लाइक योर ओन हैप्पीनेस, आपको अच्छा भी लगता है, आप कुछ बना रहे हो,
9: लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल, कि इट्स योर ओन मनी एंड यू आर गोइंग टू स्पेंड योर ओन मनी योर वे.
8: Exactly. वो मैं तो हर थोड़ी देर बाद जब वो अपने मियाँ से लेती हूँ ना क्रेडिट कार्ड की, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने वो करने, तो ये सीरियसली उनके चेहरे को पता होता है कि उनका कितना बिल बनेगा और कितना खर्चा होगा ना. Yeah, और मेरा तो एडवाइस ये है कि अपना जॉइंट अकाउंट अलग रखो, मियाँ को ना पता चले कितना खर्चा किया है.
9: Exactly, because everyone is going through difficult times.
8: Exactly.
9: Inflation ko dekh le, ya aap waise duniya ke halaat ko dekh le, whatever is going on politically.
8: To politically, economically, financially.
9: To usme everything is going tough for everyone. So before we take our break, we want you to think about your own home. Ask yourself who wakes up first, who goes to sleep last, who remembers birthdays, who books appointments and who manages finances, who notices when someone is emotionally struggling, and most importantly, are those responsibilities shared freely, fairly, and on equal basis? Not necessarily equally, but yes, fairly. Every contribution matters. We are going to talk more about equal partnerships, raising responsible children, financial responsibilities, and emotional labor, of course. Don't go anywhere. You are listening to Family Matters, 07779-481-822. We'll be right back.
10: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
11: Inspire FM.
10: Inspire 105.1 FM.
12: Trust yourself to know what's true, to find your way in the darkness. Let the word inspire you. Don't live your life in blindness. All this created not by chance, but a solemn testimony. Find the importance of this life, and upon the path stay steady. Trust yourself to know what's true. Don't follow the absurd. Let the truth inspire you, for ignorance can be cured.
13: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
14: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
13: We can also offer guaranteed rental income.
14: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
15: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
16: Rasulullah, what he went through in Ta'if, after losing his wife Khadija radiallahu anha, after losing Abu Talib, after being in that situation of boycott, the walk alone, that alone would drive any of us into absolute bitterness. Even then Rasulullah chooses ihsan. And Rasulullah says that even if the hour came, وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلًا, and you have a plant in your hand, you still haven't put it in the ground. And the hour has come. And Rasulullah says, even in that moment, plant that plant. Finish your task. Do your job. And leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will ask you what you are doing in your own capacity. And never become bitter, never become pessimistic, never become hopeless, and never lose your character because of what's being shown to you.
17: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
18: Do you feel the burnout of parenting? Do you feel that you just can't parent anymore? Do you find raising children in today's society both challenging and exhausting? Join me, Sister Navid, in my parenting show every Tuesday evening at 7 p.m. when we will be discussing the numerous challenges ranging from nurturing dispositions to building and molding the leaders of tomorrow. With Sister Navid on Inspire FM, the parenting show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.

0: how they are interrelated and why are they so important. You are listening to the Family Matters Show. 0777-9481-822 is the number that you can leave your text on, and we are going to definitely include your messages in the upcoming episodes. If we go deeper and talk about multicultural marriages, because they two different cultures are combining at one space, mm-hmm. in one house, in one home. So, Afshan, what do you think? What happens in that scenario? Like, the mother, for example, is coming from a different culture. The father is coming from a different culture. I'm not saying religion, but we are focusing on the culture.
1: Okay. If it's like culture, ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कल्चर की, तो इसमें फिर वही बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कम्युनिकेशन. ठीक है, समटाइम्स वो कहते हैं अनरिटन सेटलमेंट्स हो जाती हैं, जिस तरह कि हमारे घर में या आपके घर में बगैर कहे, बगैर बोले, बगैर बताए एक हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही उठाने लगता है. ठीक है, पता होता है कि अच्छा यार ये चलो वो नहीं है तो मैं ये काम कर लूं, वो नहीं है तो मैं ये कर लूं ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो या वो आए तो आगे से काम हुआ हो. लेकिन बाज़ औक़ात यू नीड टू सिट डाउन एंड डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आई थिंक अगर आप मल्टी कल्चरल हो, देन द बेस्ट थिंग इज टू सिट डाउन, ठीक है, एंड डिसाइड
0: थॉरली.
1: Exactly.
0: Thoroughly discuss each and everything, because this is going to be a lot of debate cause a lot of debate in the future when you have children, when they are growing up, whose culture they are going to follow, what festivals are they going to go to, their discipline, their food, family involvement, independence, everything. Because even if you are coming from an Islamic background, your culture might saying something else if you are talking about women freedom or girls freedom. So it can be a little different from the culture of your spouse.
1: बिल्कुल. दूसरी बात ये क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, वक्त बदल गया है. पहले के हालात और थे, पहले शादियां की जाती थी तो बड़े बड़े कर देते थे और फिर बड़े ही रिस्पॉन्सिबल होते थे उस फैमिली को चलाने के लिए. ठीक है, और अब बच्चे डिफरेंट हो गए हैं. आजकल इंस्टेंट का जमाना है, इंस्टेंट मिलते हैं, इंस्टेंट इश्क होता है, इंस्टेंट शादी होती है और इंस्टेंट डाइवोर्स भी हो जाती है. अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ वेरी बैड थिंग. मतलब इवन कि हमारे इस्लाम में ये वाहिद चीज है जो हलाल है लेकिन नापसंदीदा है. ठीक है, और सिर्फ डाइवोर्स नहीं होती बल्कि पूरी फैमिली बिखर जाती है, तबाह हो जाती है. तो मेरे ख्याल में अगर आप शादी कर रहे हैं, मल्टी कल्चरल है, मल्टी फेथ है, कुछ भी है, Always remember to discuss everything. Make bound. देखिए, आपको करने के लिए अगर तो आप वाकई mutual understanding पे चलते हैं तो फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है. लेकिन yes, it's better. ये अच्छी बात है कि आप कह दें कि देखो यार ये काम है, मैं चूंकि मेरे जॉब का सीक्वेंस ये है, मेरी टाइमिंग्स ये है, तुम्हारी टाइमिंग्स ये है, तो हम इसको ऐसे और इसको ऐसे सेट कर लेते हैं. इसी तरह जब फाइनेंशियल अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो अब अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो घर की मॉर्गेज भी आएगी, बिल्स भी आएंगे, ग्रोसरी भी आएगी, वो सिट डाउन, मेक अ बजट, मेक अ लिस्ट, मेक डिवाइड एवरीथिंग सो दैट यू बोथ हैव योर ओन स्पेस और फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो आपके पास, और आपको ये भी पता हो कि आपने कितना कंट्रीब्यूट करना है.
0: And you have a clear sketched road map in front of you.
1: बिल्कुल.
0: कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ करना है, क्या किस वक्त क्या चीज कहाँ पे करनी है, एंड वट आर द चिल्ड्रन गोइंग टू फॉलो, वट स्कूल दे आर गोइंग टू गो, वट फेस्टिवल्स आर दे गोइंग टू सेलिब्रेट, एंड एवरीथिंग
1: उसको करना भी चाहिए, करना भी चाहिए. क्योंकि देखिए दुनिया में ना वो जो कहते हैं ना कि तीन चीजें ऐसी हैं जिसपे बड़े बड़े हुकूमतें तबाह हो जाती हैं, जर जन जमीन. ठीक है, जर आ गया, पैसा आ गया, जन आ गई, औरत आ गई, जमीन आ गई, लैंड आ गया. तो ये वो चीजें हैं जो कि अगर इन पे पहले से ना डिस्कशन की जाए या अगर इनको पहले से ना सॉर्ट आउट किया जाए तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फस. ठीक है, आगे जाके देयर सो मेनी क्या कह सकते हैं कि आप प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. तो द बेस्ट थिंग टू डू इज इफ यू आर इन अ कल्चर मल्टी cultural wedding household

0: और फैमिली, चाहे वो आपकी बाय फेथ हो, बाय कल्चर हो, चाहे कुछ भी हो, द बेस्ट थिंग इज टू सिट डाउन एंड मेक, हाँ, एंड सोर्ट आउट करो, सोर्ट आउट करो,
1: कम्युनिकेट
0: कम्युनिकेट करो, सोर्ट आउट करो, डिवाइड करो, बताओ कि किस तरह. अच्छा, वो हम बात कर रहे थे यूरोपियन कल्चर की, तो मेरा जो नेबर है ही इज ब्रिटिश, तो एंड ही इज सच अ नाइस गाय, तो उसका ये इतना अच्छा होता है कि जब वो घर पे होता है तो वो वैक्यूम भी चल रहा होता है उनकी, वो लॉन भी ट्रिम कर रहा होता है, उसकी बीवी घर पे होती है तो वो कभी लॉन ट्रिम कर रही होती है, कभी जगह साफ कर रही होती है, तो दिस लुक सो नाइस.
1: Yeah, it is such a nice
0: तो मतलब वो डिवाइड कर रहे हैं ना, अभी अभी
1: exactly.
0: दोनों जॉब करते हैं तो दोनों में से जो भी घर पे होता है तो फिर वो,
1: They take the
0: हाँ,
1: responsibility.
0: तो जो वो कर सकता है वो करे. तो आई थिंक कि हमें हमारे कल्चर का चूंकि डिफरेंट है, तो मेरे ख्याल में हमें अपने कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा इस चीज को एडॉप्ट करना चाहिए, हर उस चीज को जो
1: बिल्कुल
0: अच्छी हो,
1: बिल्कुल अच्छी
0: अंधों
1: चीज
0: की
1: है.
0: तरह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ब्लाइंडली किसी को नहीं फॉलो करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीजें हमें
1: अच्छी
0: हर चीज
1: चीज,
0: जगह
1: why
0: से लेनी
1: not
0: चाहिए.
1: adapt any good thing that you can see from
0: हाँ,
1: others cultures,
0: अदर
1: तो
0: कल्चर्स, बिल्कुल
1: आप उसको adapt कर सकते हैं, आप
0: बिल्कुल,
1: उसको एक part of routine बना सकते हैं, there
0: हाँ
1: is no harm in it.
0: बिल्कुल,
1: So moving forward, we want to give our listeners a practical activity. This week have a family responsibility meeting, okay? So call everyone on that meeting. It doesn't have to be formal. You don't need a boardroom, okay? You can sit around the kitchen table, ask three questions. What needs to be done in our home? Who is currently doing it? Is the responsibility being shared fairly? Ask these questions to everyone in your home, in your every member of your family, and see what reactions are coming. Don't snub anyone, don't judge anyone, don't interrupt anyone. Listen. And I'm talking to the head of the family that they take all the answers with open mind and open heart. And this is going to be a very beautiful activity if you start doing it
0: बिल्कुल,
1: on some like a fortnightly basis or however you like it.
0: एंड आई थिंक जो आपकी फैमिली का सबसे खामोश बच्चा हो ना, उसको जरूर उसको बिठाकर उससे पूछे, क्योंकि आमतौर पे द क्वाइट वंस होते हैं ना, दे हैव मोर थिंग्स टू टेल,
1: They are more observant.
0: हाँ, और दे हैव मोर थिंग्स टू टेल एंड टॉक अबाउट देन द वंस हु टॉक अलाउट. लेकिन दिस इज ऑल्सो समथिंग टू कंसिडर, द पर्सन हु टॉक्स अलॉट मे ऑल्सो हैव सो मच टू स्टिल टेल, और बताने के लिए वो बोलता तो वो बहुत है, लेकिन वो बोलता क्या है, वो कैसे बोलता है, चूंकि छोटा बच्चा, हर घर में बच्चे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और जो छोटा होता है ना घर का, वो हमेशा छोटा ही रहता है, तो उसकी बात जरा जरूर सुना करें, क्योंकि
1: And
0: उसके पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको कभी कहीं और से नहीं मिल सकेगी.
1: exactly taking it forward and don't just like list visible tasks like cooking, cleaning, shopping, child care, elder care, finances. Talk about everything, emotional support, planning, family events, and then decide what can we change and ask everybody's opinion, okay? And remember, the goal is not to find someone to blame. The goal is to build a team. Maybe if you are your child, your middle child, maybe who is not talking a lot, they might be having some very good ideas in their mind about anything around the house, like garden cleaning or waste management or things like that. Okay, so try to meet. Weekly or fortnightly on this family responsibility meeting. This is one thing that you can do. This is going to be a very good way of communication, as well as having a check on responsibilities and roles that your people are doing around your house.
0: बिल्कुल सही कहा, जब सारे बैठ के किसी चीज को डिस्कस करते हैं एज अ फैमिली मेंबर, तो आपस में एक बॉन्ड भी बनता है, ट्रस्ट भी होता है एक दूसरे पे, और एक हमारी कल्चर में अनफॉर्चुनेटली चीज है कि कहते हैं कि बच्चों को नहीं बिठाओ, वो परेशान हो जाएंगे, बच्चों को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि वो नहीं, उनको नहीं पता. ये बड़ा एक बड़ा कॉमन, हम छोटे थे तो अक्सर जब बड़े बैठते थे तो हमें कमरे से निकाल दिया जाता था कि नहीं नहीं तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोग जाओ. द थिंग इज, बिकॉज बच्चे को नहीं पता कि क्या हो रहा है, उसको नहीं अंदाजा कि क्या प्रॉब्लम क्या है, कि क्या हो रहा है, उसको सीरियसनेस का भी नहीं पता होता, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो फिर अगर खुदा ना खासा कहीं पे इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो ही इज नॉट रेडी फॉर इट.
1: एग्जैक्टली अफशा, देर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जहां पर मैं समझती हूँ कि हमारे स्पेशली द चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम एशियन हाउस होल्ड्स, दे आर नॉट ब्रॉट अप एज रिस्पॉन्सिबल और अवेयर चिल्ड्रन,
0: एग्जैक्टली
1: अवेयर ह्यूमन बींग्स, के उनको सेल्फ डिफेंस का नहीं पता, उनको हाउस होल्ड मैनेजमेंट का नहीं पता एट अ वेरी बेसिक लेवल.
0: बेसिक
1: एंड आई ट्रूली बिलीव के दीज things should be there in their syllabus at least. If not taught at home, it should be there in their syllabus.
0: वो ठीक है, लेकिन मैं आपकी वाली बात कि उनको सिलेबस में भी होना चाहिए, लेकिन पहले जो है तो हम घर में तो इस चीज को बदले ना. देखिए, आपका बच्चा आपके घर में आपके साथ रहता है, ठीक है, वो देख रहा होता है, उसको सब कुछ नजर आ रहा होता है. जब आप उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं तो उसको सिचुएशन ज्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि अगर उसको पता नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है, उसका जहन है कच्चा जहन है, वो कोई भी चीज किसी भी चीज पे उठाकर उसको मिस गाइड मतलब कर सकता है, उसको मिस क्या कहते हैं, मिस जज कर सकता है.
1: एंड बिफोर योर चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम
0: अदर्स
1: द पीपल हु यू वोंट अप्रूव ऑफ, स्टार्ट इन्वॉल्विंग देम. जैसे आई वुड टॉक अबाउट माय यंगर सन, ही इज ऑलवेज कीन टू यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, एंड ही इज ऑलवेज सेइंग डू एनलाइटन मी विद ऑल योर प्लान्स बिफोर हैंड बिकॉज आई हैव टू मेक अप माय माइंड. सो आई मेक श्योर दैट आई डू, बिकॉज यू नो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. ओके,
0: बिल्कुल.
1: सो ही नीड्स सम टाइम टू get hold on everything, make a plan on his own, and you know, make up his mind and everything. So I do make sure that I tell him in advance that we are doing this and we are doing that, and we'll be going to this place this weekend, or things like that, whatever is coming.
0: Actually, baz bachche flexible hote hain, they mold according to the situation.
1: Exactly.
0: ठीक है, बाज बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है. मेरे घर में भी है, मेरा बेटा ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मेरी बेटी मतलब थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए होता है ऑब्जर्व करने में, ठीक है, हर चीज को समझने में, प्लान करने में वो टाइम मांगती है. मेरा बेटा बहुत फ्लेक्सिबल है, ही गोज विद द फ्लो. ठीक है, तो ये चीज होती है, इसीलिए आपको चीजें बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि आपका हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है. आपके एक बच्चा बहुत फ्लेक्सिबल होगा, बहुत दूसरा जो है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, ही इज जस्ट एग्जिस्टिंग देयर. और एक ऐसा भी होगा आपकी फैमिली में जिसको हर चीज को समझने में वक्त लगता है, कबूल करने में वक्त लगता है, उसको उस माहौल के मुताबिक चलने में लगता है. ठीक है, तो आप मेरा जो पर्सनल वो है वो यही ओपिनियन कि आप अपने बच्चों को अपने साथ लेके चलें. ये मत कहें कि ये अभी छोटा है, इसको निकाल दो, इसको नहीं समझ आती. नहीं, आजकल के बच्चे दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम.
1: और जो हमारा एक नेक्स्ट एक चंक था इसी से रिलेटेड, वो आपने काफी सारी बात तो उसके अराउंड कर ही दी अफशा, दैट अनइक्वल इन्वॉल्वमेंट पुट्स अ डिफरेंशिएटेड काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन. कि जब फॉर एग्जांपल इफ द फादर फिगर ही इज टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड एंड मदर इज like minimal involved in affairs, तो वो कैसा इफेक्ट डालते हैं बच्चों पे, या अगर मदर जो है वो कॉग्निटिव बर्डन उसके साथ ज्यादा है, इमोशनल बर्डन उसके साथ, शी इज डूइंग टू मच इमोशनल लेबर ऑल द टाइम, कि हर चीज उसको मैनेज करनी है, एंड फादर इज ओनली पेइंग फॉर द बिल्स एंड एवरीथिंग, तो उस सिनेरियो में बच्चे कैसे बड़े होते हैं और उनके क्या इफेक्ट आता है उनके बच्चों पर. तो ये भी एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारे सामने आती है जब वो डिफरेंशिएटेड टास्क देखते हैं पेरेंट्स को करते हुए एंड नॉट शेयरिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उन पे क्या इफेक्ट आता है.
0: बेसिकली देखिए, अगर ऐसा हाउस होल्ड है जहां पर एक फादर इज द मेन हेड ऑफ द फैमिली एंड ही इज मेकिंग ऑल द डिसीजन, एंड कभी तो चलो ये होता है कि वाइफ एग्रीज, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वाइफ डजंट एग्री, एंड बिकॉज शी डजंट हैव अ से in anything, in planning, in making decisions, this creates conflict. और इसका सबसे पहला निशाना कौन होता है, बच्चे, क्योंकि बिकॉज मम इज एंग्री, ठीक है, वो बोल नहीं सकती है, सो शी स्टार्ट डिस्कसिंग इस विद चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों को बताती है, देखो तुम्हारे अब्बू ने ये कर दिया, मुझसे तो पूछा ही नहीं. नाउ द चाइल्ड स्टार्ट सीइंग द मदर एज अ विक्टिम,
1: एग्जैक्टली,
0: एंड द फादर एज अ वेरी बैड पर्सन. मैंने बहुत सारे घर ऐसे भी देखे हैं कि जहां पर माई कहती है नहीं बेटा अगर आपके अब्बू ने किया है तो उनको पता होगा व्हाट ही इज डूइंग,
1: देयर माइट बी अ रीजन बिहाइंड इट,
0: बिहाइंड इट. अब ये एक थोड़ा सा ना सॉफ्ट कंप्लेन आ गई, मतलब कंप्लेन तो है लेकिन एक सॉफ्ट साइड की कंप्लेन है. बच्चा भी कहता है अच्छा मेरे अब्बू को ज्यादा पता है या मेरे अब्बू ठीक कर रहे हैं बिकॉज अम्मी कह रही है, और नेचुरली होता है कि व्हाट मदर सेज इज यूजुअली चिल्ड्रन एक्सेप्ट दैट, ठीक है. तो वो ये कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है अगर अब्बू कर रहे हैं, या दैट्स अ वेरी पोलाइट वे टू सेइंग दैट आई एम नॉट बीइंग इन्वॉल्वड बट व्हाट ही इज डूइंग इट माइट बी राइट. लेकिन फिर भी उस बच्चे को कहीं ना कहीं जरूर फील होता है कि यार अगर ये अब्बा ये कर रहे थे तो अम्मी से पूछ लेते ना, ठीक है.
1: There's one thing that has settled down in child's mind.
0: Yeah. तो फ्यूचर में वो हो सकता है कि वो बच्चा बड़ा होकर ये कहे कि आई एम द मैन ऑफ द हाउस, आई अर्न, आई विल मेक द डिसीजन बिकॉज आई नो
1: दैट इट हैज been happening in
0: my family, yeah. My dad used to make a decision, he was always right, my mom said. So I am making decisions, main family ki main decisions le raha hu, main kar raha hu because I know I am right even if he is wrong. And maybe his wife is not as cooperative as his mother, theek hai, uski ammi ne to keh diya ki chalo beta abbu ko pata hai wo.
1: But that wasn't cooperation, I'm sorry, that was submissiveness.
0: Lekin ye dekho hamara culture hai. हमारे यहाँ बच्चियों को सिखाया जाता है जो मियाँ कहे वो ठीक है, ठीक है, आपने उसी
1: के लिए
0: ठीक है. सो दैट्स व्हाई इन दीज सर्कमस्टेंसेस कम्युनिकेशंस एंड डिवाइड ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज वेरी वेरी क्रूशल, ठीक है. अगर नहीं करेंगे तो बच्चे भी वही देख के बड़े होंगे. अब जब आप अपनी वाइफ को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, उससे पूछ, या वाइफ हस्बैंड को इन्वॉल्व नहीं कर रही है डिसीजन मेकिंग में, उसको नहीं पूछ रही है, उसको नहीं बता रही है, उसको अपनी वजह से फैसले किए जा रही है, एंड द फादर इज बीइंग लेफ्ट आउट, द सन इज लुकिंग एट दिस, देन ही इज गोइंग टू बी वेरी, वो क्या कह सकते हैं आप, कि वो बहुत ज्यादा अथॉरिटाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा मेरे बाप की कोई इज्जत नहीं थी तो आगे मेरी भी नहीं होगी, सो आई नीड टू हैव अ फुल कंट्रोल,
1: पुट माय स्टेप फुट डाउन फ्रॉम डे वन.
0: तो वो पहले दिन से ही अपनी बीवी को दबा के रखेगा. सो आपको, हम कहते हैं ना, एक मियां बीवी और बच्चे, कहने को ये लफ्ज बड़ा छोटा है, अ फैमिली इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हेन यू से दैट, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व्स इन मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग फैमिली
1: इट्स ह्यूज
0: एंड इट्स वेरी हार्ड. इसीलिए इस्लाम में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने इतनी इतनी छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी सी चीज को भी बयान किया हुआ है. हमारे यहाँ आमतौर पे क्या सिखाया जाता है कि अगर शौहर की नाफरमानी करोगी तो सारी रात फरिश्ते लानते भेजेंगे, ठीक है, जहन्नुम में जाओगी. क्या हमने अपने बेटे को कभी ये बताया कि अगर बीवी की बात नहीं सुनोगे, बीवी के हुकूक सिर्फ रोटी पानी छत नहीं होता, उसकी और बहुत सारी चीजें हैं, अगर तुम उनको तवज्जो नहीं दोगे तो तुम्हारा ठिकाना भी जानना होगा. हम अपने बेटों को कभी ये बात नहीं बताते.
1: एग्जैक्टली, बिकॉज आफ्टर ऑल अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, और उसमें जो है वो वी डू कीप डॉटर्स एंड सन्स एट डिफरेंस, और उसमें आई थिंक अफ्रीकन कल्चर में भी थोड़ा सा द एल्डेस्ट डॉटर इज टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हाउस एज कम्पेयर टू बॉयज या रेस्ट ऑफ द सिबलिंग्स. तो वो भी एक सिनेरियो होता है जहाँ पे द एल्डेस्ट डॉटर इज कंसिडर्ड और इज सपोज टू टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द सिबलिंग्स.
0: वो मदर फिगर बन जाती है ना,
1: शी बिकम्स अ मदर फिगर, एग्जैक्टली.
0: और इसी तरह अगर बड़ा बेटा होता है तो हम उसको फादर फिगर बना देते हैं. अब्बा के साथ तुमने खड़ा होना है, अब्बू का तुमने कंधा बनना है, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम बड़े भाई हो.
1: एंड समटाइम्स इन द होल सिनेरियो दे लूज देयर ओन इनोसेंस एंड दे लूज देयर ओन चाइल्डहुड समवेयर.
0: बिल्कुल. और बाज़ औक़ात होता यह है कि बड़े होने के बाद वो अपनी फैमिली से ज्यादा अपने बहन भाइयों के ऊपर उनका फोकस हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को, अपनी फैमिली का सुकून, अपनी फैमिली की बॉन्डिंग, और वो सब खत्म हो जाती है. इसीलिए अल्लाह ताला ने उस सिलसिले में भी आपको एक हद दी हुई है. आपका बच्चा बच्ची आपके बहन भाई सॉरी अगर वो अपने पैरों पे खड़े हैं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर देम, आप सिला रहमी करो, आप बिल्कुल करो, उनके हुकूक अदा करो उनको को, लेकिन जब आपके बहन भाई अपने पैरों पे खड़े हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने आपके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बीवी की रखी है.
1: एग्जैक्टली. अनदर फूड फॉर थॉट, व्हाट इज वन थिंग दैट एवरी फैमिली कुड चेंज दिस वीक टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप्स? आप अपनी फैमिली, इफ यू जस्ट लुक अराउंड, आप अपनी फैमिली में क्या एक ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे आप समझते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपके बेटे के साथ, बेटी के साथ, आपकी मदर के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, इट कुड गो अ नॉच अप, इट कुड बी बेटर, कोई एक ऐसा छोटा सा जेस्चर करने के साथ? तो दिस इज फूड फॉर थॉट. Do give it some time. Do give it a few minutes to think around it. Or moving forward towards the end of our the Family Matters show, episode number 4. Afshan, what are we taking home from roles and responsibilities?
0: Well, अगर हम roles and responsibilities की बात करते हैं तो जिस तरह आपने पहले कुछ सवाल इनके लिए छोड़े थे हमारे नाजरीन के लिए, मेरे ख्याल में अगर उस पर अगर फोकस किया जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी फैमिली में कौन सा ऐसा बच्चा है जो खामोश है, या कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आज तक हमने शेयर नहीं की. लेकिन आज हम बैठ के सोचें तो अगर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या बनेगा हमारी फैमिली पे. आज अगर आप बैठे और आप ये देखें कि इतने अरसे में आपने ये काम नहीं किया एज अ फैमिली, तो आप वो काम कर लें. आपने अगर ये देखा है कि आज आपने कभी खाना नहीं बनाया, या आपने कुछ बारबेक्यू टाइप, आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है, गर्मी बहुत है वैसे, लेकिन अगर आप कोई अपनी फैमिली के लिए कोई छोटा मोटा खाना बना लें, आप सब मिलके बैठ के खा लें, तो उससे भी आपका जो बॉन्ड है, जो वो है, वो एक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. वो एक नई चीज होगी आपकी, शायद आपकी फैमिली भी आपसे एक्सपेक्ट ना कर रही हो कि आज अब्बू या अम्मी या जो फारिग है या वो खाना बनाएगा. तो कहने को ये है कि अगर कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड is also very important in the form, in the family bonding. तो हम सिर्फ इसको नहीं कह सकते कि आपने कम्युनिकेशन अच्छी कर ली तो इसका मतलब है कि सारे मसले हल हो गए, या अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है तो आपस में डिवाइड कर ली तो आपकी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो गई. ऐसे तो नहीं होता. उसमें तो जारी बात है आपने दोनों चीजों को लेके चल रहे. जिस तरह हमने अभी बात की कि फैमिली कहने को तो एक बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सा लफ्ज है, ठीक है, लेकिन उसकी बात उसके अंदर डेप्थ बहुत ज्यादा है. उसमें आपके पास बहुत सारी चीजें एक अच्छी फैमिली को बनाने में काउंट करती हैं.
1: एंड वन थिंग दैट आई ट्रूली सपोर्ट इज दैट विद ऑल द चेंजिंग टाइम्स, ऑफ कोर्स वी डू वांट टू स्टिक टू आवर कल्चर, लेकिन जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है वैसे ही कल्चर, लैंग्वेज, आपके रिलेशनशिप, everything around family is evolving, theek hai, so don't be rigid around these things. Give some space to all your family members. Aap apni ghar ke sab logon ko aage badhne ka mauka dein, unse unki responsibilities share kare taaki unke upar se mental burden, unka physical burden thoda sa kam ho sake aur they also get some chance to move forward in their lives. Career wise or their own personality development or their own personal grooming, whatever it is that they want to do. So today we have learned that every family has responsibilities, but every family can decide how these responsibilities are shared. They are different for every household. We discussed nuclear families, single parent families, extended families, equal partnerships, chosen families, faith and culture, gender roles, children and responsibility, money and emotional labor. अफशा, कोई ऐसी चीज है जो हमने अभी तक छोड़ दी है?
0: अभी तो अगर हम इस डिस्कशन करें तो ये तो बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है. अगर हम बोलना शुरू कर दें जैसा हम बोलते हैं तो मेरे ख्याल में अगले 4 दिन भी हम बोलते रहेंगे.
1: Yes,
0: लेकिन हम लोग चूंकि सिर्फ मेन पॉइंट्स को टच कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ वो मोटे मोटे पॉइंट्स को उठा रहे हैं जो कि आजकल या वैसे एक बड़े सामने आते हैं जो कि बेस करते हैं फैमिली की बॉन्डिंग पे, फैमिली के प्रॉब्लम्स पे, फैमिली के उस पे हम ज्यादातर उसमें ही लेके चलते हैं. तो आज का हमारा जो मौजू था वो था फैमिली मैटर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे था. तो आप लोग जरूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा, हमें लाइक डिसलाइक सजेशंस ये जरूर दीजिएगा. और नेक्स्ट वीक
1: 4077794818222 इज द नंबर दैट यू आर गोइंग टू कनेक्ट अस विथ. एंड देन अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे काइंड, स्टे कनेक्टेड, शेयर द वर्क, शेयर द केयर, एंड रिमेंबर अ फैमिली इज नॉट बिल्ट बाय वन पर्सन एफर्ट, इट इज बिल्ट बाय एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन. वी आर गोइंग टू कम अप विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द फैमिली मैटर्स शो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, take care and Allah Hafiz.
0: Allah Hafiz.
2: इसके बाद प्रोफेसर मसूद अख्तर हजारवी साहब का प्रोग्राम सदाए तकबीर पेश किया जा रहा है. मजीद नशरियात के लिए सुनते रहिए इंस्पायर एफएम 105.1.
3: जेम्स एंड जूल्स, वाइज सेइंग्स, इंटरेस्टिंग इवेंट्स एंड मोरल लेसन्स फ्रॉम इस्लामिक हिस्ट्री. रिस्पेक्ट फॉर द स्कॉलर्स.
4: Muhammad ibn Amr related from Abi Salama that Ibn Abbas radiyallahu anhuma stood to hold the saddle of Zayd ibn Thabit, his teacher. Ibn Thabit said, O cousin of the Messenger of Allah, move away. Ibn Abbas replied, This is how we treat our scholars and noble ones.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation, and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS. And begin your journey towards justice today.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services, and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: The Prophet, peace be upon him, said, I have been told a parable about myself. A lord built a house, laid a feast in it, and sent an emissary to invite everybody to the feast. Anyone who accepted this invitation, he entered the house, ate of the feast, and earned the Lord's pleasure. But the one who did not accept this invitation, he did not enter the house, got no share of the feast, and incurred the Lord's anger. He then explained thus, The Lord is God. The emissary who issues the invitation to the feast is Muhammad. The house is Islam, and the feast is the paradise.
8: Narrated by Rabia Al-Jureishi in the collections of Darimi.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है. आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोनसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं. ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें. इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज.

0: कैसे लेता है नहीं लेता। आपने शादी करनी है, बच्चे करने हैं उनसे।
1: बिल्कुल सही है ज़्यादा, हम तो उसको वही अफशा ही बुलाते थे, कभी आपका नाम अफशा ही है।
0: अगर वो कह रही थी फशां कर लें फिर भी ठीक है, चले उसको सामने फशां कर लें, लेकिन जो जो भी है ये तो करीबी कुछ लोग होते हैं, बट उनको आदमी ये बताता है, टेक इट इजी, इट्स जस्ट अ नेम। आप अपना नाम नहीं हो, आप अपना काम हो, अपना अमल हो। लोग आपसे खुद पूछेंगे आपका नाम बड़ा प्यारा है, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जो लोग जिन्हें जो खुद आपसे इज्जत प्यार करेंगे ना, वो पूछेंगे आपका ये नाम है इसका मतलब क्या है, फलां है वो। जब तक उस लेवल पे लोग आएंगे फिर ये बंदा बात करता है उनसे, वरना नाम लिया उन्होंने नहीं लिया। एक आम आदमी आपका नाम कैसे लेता है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने देखा है, ये तो अभी आपने पॉइंट ऐसा दिया तो मुझे ये ख्याल आ गया कि इसके पीछे पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसके पीछे आपका पूरा बिहेवियर है। अगर आप इन चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों को हम इस तरह डील करते हैं, तो हम बड़ी चीज़ों में कितनी मुसीबत होंगे अगर हम छोटी बात को नहीं जाने देते।
1: बिल्कुल सही है अजाला। और लोग लोग पता नहीं अजाला उनको क्यों इतना इम्पोर्टेंट होना इतना अच्छा लगता है,
0: बिकॉज
1: लाइक यू
0: और
1: जस्ट
0: कुछ भी
1: वॉन्ट।
0: तो नहीं है ना उनके अंदर, कख नहीं है उनके अंदर। क्या करें वो बेचारे, उनकी साइड से भी सोचें, एम्पथी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। चल मैं थोड़ा थोड़ा सा ना वेल्वेट टच करते हैं, ठीक है। वो वेल्वेट टच में उनको ये, उन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास पुराना फैमिली का एक नाम है, जो फैमिली अच्छी थी, जैसे मुसलमानों के पास कख नहीं है, कख नहीं है इनके पास। पिछले 400-500 सालों में उन्होंने कख नहीं किया, वो पिछली हिस्ट्री को हमने जीरो ईजाद किया था, उससे क्या फर्क पड़ता है बाबे हो। जीरो जित आपने ईजाद किया था, अच्छा गुड, ले लो इसके 5 रुपए, बाकी इसको इस्तेमाल करके अगले चांद पे चले गए, मार्स पे चले गए, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन आपको दे दें हम सारा। इसके कोई रॉयल्टी थी जीरो की क्या? इसी तरह कि हम पुराने जमाने में माबेरे अबाव अजदाद ऐसे थे, इस पे तो शर्म शर्म करनी चाहिए हमको। अगर वो इतने कमाल थे, हम कहाँ हैं, हम तो उनके नाम लेने के काबिल भी नहीं है। तो इस तरह कोई नहीं सोचता, खामखा बड़ी बड़ी बातें सोचते रहते हैं। पुराने ज़माने में हमारी हुकूमतें थी, अब तो आपके पास अभी भी 57 कंट्रीज में आपकी हुकूमतें हैं, एक छोटा सा डिसीजन आप नहीं ले सकते। एक मुल्क जो दुनिया में ऐसे खाम खा जो है वो चौधरी बना फिर रहा है छोटा सा, और वो सारे काम उल्टे कर रहा है, उसको पकड़ नहीं सकते आप, उसको आप सोशल बॉयकॉट नहीं कर सकते आप। मुल्क आपस में मिल के उनको आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, पूरी दुनिया वीडियो देख रही है, तस्वीरें देख रहे हैं, और क्या इस्लाम इस्लाम खेल रहे हैं हम लोग। खामखा मजाक बनाए हुए हम लोगों ने, कुछ भी नहीं है हमारे पल्ले। तो जाहिर बात है जो होता है उसको लेके चूसते रहते हैं। वो जो नहीं होती है कैंडी पकड़ के एक छोटा सा बच्चा करता रहता है और कहता है बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। तो क्या कैंडी खाने से प्रोटीन्स पूरे हो जाएंगे, फैट्स पूरे हो जाएंगे, बेसिक आपके कार्ब्स पूरे हो जाएंगे, एनर्जी बेसिक आ जाएगी आपको? नहीं, बस आप सिर्फ दुनिया में चीज़ को पकड़ के उसको करते रहना सिर्फ।
1: बिल्कुल
0: इससे तो हमारा दोस्त अच्छा था जिसने देखा, वो याद है आपको मैंने किस्सा सुनाया था?
1: दोबारा मुझे वो
0: वो मैंने तो, अच्छा आपको आपको मैंने सिर्फ सुनाया है तो आपके जहन से वो इमेज नहीं जाता, मैंने तो देखा है दैट।
1: अजादा, मुझे लगता है उस स्टोरी के बाद मुझे ट्रॉमा हो
0: हाँ जी, और उसने तो
1: गया।
0: ऐसे वापस जाते हुए टेबल को टच करते ही उठाई और किया। और ये बात मैं अब उसकी, इतना वो मोटे हो गए हैं, गंजे हो गए हैं, इतने बड़े बड़े उन्होंने दाढ़ी रख ली है, इतने आपको बड़ा बंदा हो गया, लेकिन उसकी शक्ल देखते हुए मुझे वही बात याद आती है 30 साल से।
1: और उनको पता है कि ये सब कुछ आप, यानी उनको इस किस्से का पता है कि नहीं?
0: नहीं वो बेचारे लोगों को तो ये भी नहीं पता, उनके बच्चे भी हैं, उन्होंने क्या कमाया था, क्या बोला था, उनकी क्या कमिटमेंट थी स्कूल, उनको एकेडमी के ज़माने की कख बातें नहीं याद। आप उनको याद भी कराएंगे उनको, उनको ये पता है मेरे पास प्लॉट कितने हैं, और एक प्लॉट अगर है तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, तो कैसे मैं करूँगा, घर वाले क्या कहेंगे, घर में ये जो मसला चल रहा है उसको मैंने कैसे, इससे बाहर निकलेंगे तो ये सारी बातें वो करेंगे। ये तो उन लोगों के लिए हैं जो ऑब्जर्वेशन रखते थे, इंजॉय करते थे लाइफ को, चीज़ों को देख रहे थे, फ़न कर रहे थे, और अपने मसले शसले जब ख़त्म आते हैं ना। पिछली डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा कहा था, एयरपोर्ट पे जब वो जाती हैं तो वो लोगों को देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं सारा कुछ, कि कौन कहाँ जा रहा होगा, ये खुश हैं, किसको मिल रहे होंगे, क्या होगा, इनकी क्या ज़िंदगी होगी। तो उनको मैंने क्या जवाब दिया था, ये वो लोग, ये लग्जरी वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, दोज हु आर पुट टुगेदर, जिनके टाइम के ऊपर
1: बिल्कुल
0: अपनी चीज़ें ठीक होती हैं, जिनके फाइनेंसिस के मसले नहीं। आम बंदा तो एयरपोर्ट पे उतरता है, उसको लगता है बस उसने कोई अमेरिका फतह करना है, वहाँ से उसने सामान को टकराता हुआ जाता हुआ, इससे मिलता हुआ उससे मिलता हुआ, घुड्डी उतारता हुआ पहनता हुआ, फोन को कनेक्ट करने की कोशिश करता हुआ, उसकी बैटरी डाउन हो रही है, वो ऊबर के चक्करों में पड़ा हुआ।

0: पार पार देखता हुआ तीन सार से टकराएगा, दो से सॉरी करेगा, एक के ऊपर चढ़ जाएगा, उसका पांव चढ़ा देगा, ये आम बंदा होता है। या उसका बैग किसी के पांव के ऊपर से गुजर जाएगा जैसे पीछे उसके कोई लगा हुआ है। तो ये है वो चीज़, ये आम आदमी बेचारा, तो वो उसके पैसे नहीं पूरे हो रहे, वो अगर अब वो ऊबर ले या बस ले या वहां से वो ट्रेन ले, उसके पास पैसे ही नहीं है, बेसिक खर्चे ही कभी उसने सीधे नहीं किए, लेकिन है वो बहुत अच्छा आदमी। उसका नाम
1: लेकिन आजाद मौला
0: अलेक्जेंडर है,
1: ये जी,
0: उसका
1: बिल्कुल
0: नाम
1: आप बताएं।
0: अलेक्जेंडर डुमो है
1: वैसे बहुत मजे की चीज होती है कि आप एयरपोर्ट पे लोगों को ऑब्जर्व करें, या स्पेशली हॉस्पिटल में जो वेटिंग रूम होते हैं उसमें हो गया, या शॉपिंग मॉल पे जब लाइक शॉपिंग ना करें, बस बैठ जाएं, जस्ट देखें कि लोग क्या कर
0: हाँ,
1: रहे हैं
0: लेकिन
1: क्या
0: ये
1: नहीं
0: वही
1: कर रहे।
0: कर सकता है ना जिसका दिमाग एक्टिवेटेड है, जिसको इंसानों में इंटरेस्ट है, जिसको ऑब्जर्वेशन में इंटरेस्ट है, जिसकी इमेजिनेशन किसी किस्म की होगी, जिसके खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे हैं, जो बीवी जिसने अभी भी बेगम से गर्लफ्रेंड से झूठ बोला हुआ है वो अभी फड़ा जाएगा, उसने चीज़ें कवर करनी, उसका दिमाग के अंदर कैपेसिटी नहीं है इन तमाम चीज़ों की। वो अपने जो टोपियाँ वो घुमाते हैं, लेडी हैं या जेंटलमैन है, तो वो टोपी घुमाने के चक्कर में बेचारे सोचते रहेंगे, तो उन बेचारों के लिए तो ये लग्जरी है ना।
1: आजादा ने मुझे आपसे ये बात पूछनी, जब लोग आप में कोई क्रिएटिव चीज देखते हैं, जैसे उनको पता है कि आप थोड़े क्रिएटिव हैं, तो फौरन बस वो ये बात आपसे करते हैं कि इसको बिजनेस बना ले, इससे पैसा कमा ले। व्हाई इज इट लाइक दिस? क्या इंसान जस्ट क्रिएटिव नहीं हो सकता? हर चीज को बस पैसा कमाना होता है हर चीज
0: आपने
1: को।
0: आपने एक चीज़ देखी होगी, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बल्कि आप एक काम करें, नहीं ठीक है, ये दो किस्म की, ये बड़ी कमाल ऑब्जर्वेशन है, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, और इतने लोगों का इतना दिमाग ही नहीं होता कि इन चीज़ों को ऐसे सोचें और इसको ना क्वेश्चन बनाकर इससे विजडम कशीद करें। आप ऑब्जर्व करेंगी जिस जो भी क्रिएटिव आदमी को ये आइडिया देता है कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है, इसको मोनेटाइज करेंगे या इसको पैसे इसके ऊपर बनाएं, तो आप ये देखेंगे कि उस बंदे के अपने पास ये क्रिएटिव एबिलिटी नहीं। ऐसा ही होता है ज़्यादातर,
1: जी बिल्कुल
0: उसके पास वो दूसरा काइंड ऑफ ब्रेन है जो पैसे बनाता है और वो पैसों के बारे में सोचता है। तो इससे ये पता चलता है कि क्रिएटिव आदमी को रब ने, ज्यादातर लोग जो क्रिएटिव होते हैं वो क्योंकि नेचुरल एबिलिटी उनको रब ने दी होती है, तो उसको वो इतना सीरियस नहीं लेते क्योंकि वो इनेट उनकी नेचर का एक हिस्सा है। क्लियर? ये करने से ये होता है कि जब आप किसी चीज को अपनी नेचर का हिस्सा आपको साथ आराम से आसानी से मिल जाती है, तो आपको उसकी इतनी कदर नहीं होती। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं, जो जिनको ये फाइनेंशियल साइड या ये पैसा बनाने का और ये वाली साइड जो जिनकी एबिलिटी होती है, वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ माइंड के लोग होते हैं, और ये रब ने इसलिए बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट लोग, कि जब ये आपस में मिल जाएंगे तो उससे कोई क्रिएटिव काम मोनेटाइज हो गया, उससे पैसे बने, उससे लोगों को नौकरियां मिली, वो उससे आपका बाद में वही चीज़ पे आपका फोकस हो जाता है। लोग अपने अपने जॉब्स जिसमें वो थक जाते हैं, अक जाते हैं, वो छोड़कर इस काम में आ जाते हैं, और फिर इस काम से पैसे भी बनते हैं, आपका पैशन भी होता है, फिर इस काम से बहुत सारे और लोगों को आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, वरना एक करना चाहे तो ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्रिएटिव साइड को ही वो खुश होते रहते हैं कि वो एक क्रिएटिव चीज़ है उनकी, और दूसरे जो हैं वो उस पर मोनिटाइज करते हैं और इससे एक बिजनेस भी बन सकते हैं। अब ये दो किस्म डिफरेंट किस्म के लोग हैं। अब क्रिएटिव लोग जो ज़्यादा होते हैं उनको क्योंकि आसानी से मिलती है, तो वो ज़्यादातर, ये रब की तरफ से है कि ज़्यादातर जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो अपनी किसी भी क्रिएटिव चीज़ को वैसे ही लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि क्रिएटिव होना रब की तरफ से एक रब का वस्फ है जो इंसान के अंदर आया, तो उस क्रिएटिविटी का इट डिमांड्स एक्चुअली दैट आप इसको लोगों के साथ शेयर करें। तो उसका कोई सच है, कोई ट्रूथ की बात है, कोई क्रिएटिव काम है, तो आप उसका हक है कि आप उसको रब की तरफ से आए, आप उसको लोगों के साथ शेयर करें। अब इस पे पैसे को बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता, ये उसकी अपनी नेचर का हिस्सा है। लेकिन कई लोग हर चीज़ को, ये दो किस्म के लोग हो गए मैंने आपको बताया, ये दोनों मिलकर बिजनेस भी कर सकते हैं, और फिर आप अलग अलग अगर इनको सोचें तो एक बंदा हो सकता है उसको सोशल बिजनेस बनाना चाहे, हो सकता है उसको कमर्शियल बनाना चाहे, हो सकता है उसको बिजनेस बनाना ही ना चाहे, प्रोबोनो बस लोगों के साथ शेयर करके खुश हो जाता है, ये एक बंदा है। दूसरी तरफ वो जो बंदा है जो सिर्फ पैसे बनाना चाहता है, उसका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है, वो कोई सोशल बिजनेस नहीं करना चाहता, अगर वो कोई उसमें से अच्छी चीज़ नहीं निकालना चाहता, उसकी कोई ज़कात नहीं निकालना चाहता, उसको कोई किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, वो सिर्फ मनी माइंडेड आदमी है, तो वो इसी तरह सोचता है हर चीज़ के बारे में। अब एक और, ये आपको तीन डिफरेंट सिनेरियोज दिए हैं, अब एक चौथा सिनेरियो है। चौथे सिनेरियो में एक आदमी जो क्रिएटिव है और उसको और कोई काम नहीं करता, मोस्टली क्रिएटिव यू नो बाय नेचर लेजी होते हैं, तो अगर वो कोई काम नहीं कर पाता तो इस काम की वजह से अगर वो अपना रोजी रोटी चलाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कोई और काम करता है, इस काम को वो लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, तो वो ये ज़रूर कर ले। लेकिन जो दूसरी तरफ, ये चार सिचुएशंस हो गई, ठीक है, पांचवी सिचुएशन इसकी ये हो सकती है कि जो दुनिया ऐसी बन गई है कि हर चीज़, इट ऑलवेज बॉयल्स डाउन टू द मनी। कई घर, जब वो बंदा अमीर होता है तो कोई बंदे को उसकी खराबियां नज़र नहीं आती, ना उसके दोस्तों को, ना उसकी फैमिली को खराबियां नज़र आती हैं। जैसे ही वो बंदा गरीब होने लगता है, मेरे कई दोस्तों के साथ ये हो रहा है, उसके साथ आपकी लड़ाई भी शुरू हो जाती है, लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं, लोग उसके साथ रिश्ते भी तोड़ना चाहते हैं, लोग दुश्मनियाँ भी डाल लेते हैं, क्योंकि अब वो किसी जोगा नहीं रहा। इन चीज़ों को सामने रखते हुए इंसान ने ये सोचा कि पैसा ही अगर सब कुछ है तो क्यों ना सिर्फ पैसा कमाएं, क्योंकि पैसे वाले के रिश्ते भी नहीं टूटते, उससे लोग नाराज़ भी नहीं होते, उसके लोग साथ चलते हैं, वो अगर बदतमीज़, बद नाहिंजार बुरा आदमी भी हो, बूढ़ा भी हो जाए, तो भी लोग उसको रिश्ता देना चाहते हैं, उसके साथ लोग रिश्ता रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपनी पार्टीज रखना चाहते हैं कि उनके इन दिनों में वो आ सकते हैं कि नहीं, ये सब कुछ वो करना चाहते हैं। तो फिर इंसान ने सोचा, और फिर वो चॉकलेट फिल्म की जो लाइन थी जो मैं कभी नहीं भूलता, इरफान खान साहब की आवाज़ में डिलीवर हुई थी, और उन्होंने कहा था कि पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं। ये इसलिए कहा था कि दुनिया ने ये आलम कर दिया है कि सिर्फ पैसा ही, और ये अभी से नहीं है, ये कारून के ज़माने से ऐसा था, जिनके खजानों की कुंजियां जो थी ना, ऊँट लेकर फिरा करते थे। तो और ये पैसा जिसको चढ़ जाता है ना, जिसके दिमाग में इसका असर हो जाता है ना, उसके दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। इन्हीं ताकत और पावर, पैसा से ही पावर है, पैसे से ही कुर्सी है, तो इसी से लोग फिरौन बन जाते हैं, खुदाई का दावा भी करते हैं, नमरूद बन जाते हैं, खुदाई का दावा भी करते हैं। और जब ऐसा वक्त आता है कि जब इनका इकतदार या इनकी पावर जाने लगती है, तब भी आम आदमी सोचता है यार इनको इतनी अक्ल नहीं थी, नहीं, क्योंकि मत मार देता है पैसा और पावर इंसान की। और इस बात का सबूत क्या है, इस बात का सबूत ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, जब इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हर ज़माने में ना, अभी मूसा अलैहिस्सलाम कब एग्जिस्ट करते थे, तकरीबन 3,000 साल पुरानी, उससे भी पहले की बात, ठीक है, तो 3,000 साल पहले भी जब वो अच्छा काम या नेक काम करना चाहते थे तो इन्होंने उन पर क्या इल्ज़ाम लगाया, एक औरत पकड़ ली और उनको कहा जी आप ये बोलें कि उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की। तो इतने थके हुए लोग हैं ये, इनोवेटिव तो है नहीं, ये आज भी यही हरकतें करते हैं, किसी बंदे पे कोई औरत या कोई कुछ, मतलब बंदी या कोई बच्चा या कुछ ऐसी चीज़ डाल के उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को एक महफिल के अंदर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने ये किया है, तो उनको इतना, वो बहुत जलाली गुस्से वाले आदमी थे, तो वो जब उनकी जलाली तबीयत में जो उनको गुस्सा जब चढ़ा, तो और ये कारून लोगों ने ये मिलकर ड्रामा किया था, तो उन्होंने उसको कहा, उतने गुस्से में थे कि उन्होंने कहा, ज़मीन को हुक्म दिया कि इसको अपने अंदर निगल ले। तो वो कहते हैं कि वो जब ज़मीन में धंस रहा था उस वक्त भी उसने नहीं कहा कि मुझे छोड़ दो या मुझे माफ़ करो या कुछ और, उसके पता है अल्फाज क्या थे, वो कह रहे हैं आप मुझे इसलिए ज़मीन में घुसा रहे हैं कि मेरा सारा माल जो है आप हथियाना चाहते हैं।
1: या अल्लाह।
0: तो अगर आप गुस्से वाले जलाली मूड में बंदा हो और पैगंबर हो रब का और कलीमुल्लाह हो, रब से बात की उसने, तो उनकी जलाल जो सेकंड, गलत बात नहीं करनी होती, जब बंदा को सख्ती में हो तो उसके साथ उल्टी सीधी बात नहीं करनी होती, स्पेशली अगर वो हमेशा राइट पे हो, ठीक, तो बजाय उसके उधर ये एक तो वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उनको सख्ती उन्होंने की तो उन्होंने कहा सजा दी, अब वो रास्त सजा के अंदर ही दूसरा गलत जुमला बोला, तो आगे आगे पता है फिर क्या डिसीजन आया, इस ज़मीन को हुक्म दिया कि इसको इसके खजानों समेत ज़मीन में दफन कर दो, तो सारे का सारा
1: अच्छा
0: सब कुछ दफन हो गया। तो इसीलिए लोगों को नहीं समझ आती कि, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं जब आप नीच सोच के मालिक होते हैं ना, तो आला सोच का बंदा आपकी या बंदी आपकी औकात से बहुत ऊपर होता है। अब आपसे, क्योंकि वो बहुत ऊपर होता है या होती हैं, तो आप क्या करते हैं, खुद तो आप ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी सोच समझ के आना पड़ता है, एक पूरा जर्नी होता है, रब की मेहरबानी होती है, उनके किए हुए अमल होते हैं, उन लोगों की दुआएं होती हैं, ये सब मिलके उसको बड़ा इंसान या बड़े बंदी बनाते हैं। अब आप ये सब तो कर नहीं सकते क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी नीच नीच गेम खेली है, तो अब आप क्या करते हैं, उस आदमी को अपने लेवल पे लेके आके उसके साथ डील करने की कोशिश करते हैं, उसको नीच, उस पर इल्ज़ाम लगा के कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसको घटिया और नीच साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि वो मेरे लेवल पर आए, मैं उससे लड़ूँ। अब इस बात को यहाँ से उठाएं और रब पे ले जाएं। ये जितने लोग रब की मैग्नैनिमिटी को, रब के जो ऑल नोइंग होने को और उसके कमाल होने को जब नहीं समझ पाते और उसको सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं, तो ये क्या अपनी सोच को जब खोल नहीं पाते तो ये इतने नीच सोच के साथ चले जाते हैं कि ये रब को इतना छोटा कर लेते हैं कि जो इनके जहन के मुताबिक सिर्फ इनसे प्यार करता है और सिर्फ इनके मज़हब को और इनको जो है वो अप्रिशिएट करता है और इनका ही है और बाकी किसी का नहीं है, तो ये क्या करते हैं उस रब की ज़ात को भी अपने मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक छोटा करते हैं पहले और फिर उसके साथ डील करते हैं। तो दिस इज़ हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट्स। मेक सेंस? ये करता हुआ आप देखती हैं लोगों को? लेकिन इस तरह हम सोचते नहीं हैं कि ये इस तरह साइकोलॉजी काम करती है, इस तरह नीचपन इंसान का काम करता है, इस तरह जो हैवानी हालत में इंसान होता है अपने सर्वाइवल के लिए, किसी का बच्चा भी खा सकता है, किसी की भी जान ले सकता है, और दूसरी तरफ जब इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, उसकी सोच बड़ी हो जाती है, तो वो लोगों की जान बचाने के लिए जिन बच्चों को वो जानता भी नहीं अपनी जान दे देता है, जिन लोगों को वो नहीं जानता उनको बचाने के चक्कर में भी अपनी जान दे देता है इंसान, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग के अंदर इंसान होना जो है वो बहुत आला व अरफा होता है बजाय इसके कि आदमी होना जिसने अपनी जान बचानी। ये फर्क होता है दोनों के बीच। और कोई भी हमारे इर्द गिर्द ऐसा इंसान हमको मिल जाए जिसके अंदर ये छोटी मोटी भी इस किस्म की जो है ना निशानियां हों, कोई मर्द हो, कोई औरत हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, तो हमें खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को कि हम उनकी प्रेजेंस में हैं, या हम उनको जानते हैं, या हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, या हम उनकी प्रेजेंस में हैं। ये इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे ज़र्फ़ बढ़ता है आपका, अच्छे लोगों से, अच्छी बात से, अच्छी समझ से, और ये करने से, सोचने से, दिल को बड़ा करने से, दुनिया की ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अपने आप को ग्रैंड समझने के बजाय उसमें अपना छोटा रोल समझना, छोटा सा रोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़र्रे के बराबर है। बट उस ज़र्रे के अंदर जब आप जाएंगे और उसको जब आप देखते हैं तो आपको उसके अंदर बहुत बड़ा कुछ आप चेंज कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में, और स्पेशली इस ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, फाइबर ऑप्टिक्स के ज़माने में, जहाँ पे आप दुनिया के कम्युनिकेट कर सकते हैं, दुनिया के साथ बहुत सारे बिजनेसेस कर सकते हैं उन मुल्कों में जिनको आप ना कभी जानते थे ना मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो इस ज़माने में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और कोई चीज़ डॉक्टर साहब, अभी तो है आपके जहन में एक आध सवाल?
1: दो
0: सवालों से तो आप पूरा शो ले जाएंगी हमारा, बेहतरीन।
1: और कोई तो नहीं है?
0: कोई भी नहीं है, हमने आज दाढ़ी बढ़ाई हुई है और आज हम आपको एक विजुअल देते हैं, जितने हमारे सर पे बाल हैं उतनी हमारी दाढ़ी मूंछ के बाल हैं। बड़े दिनों से मैं ये व्यू लेना चाह रहा था कि ये जो सॉल्ट एंड पेपर अगर इंसान के पूरे मुंह पर एक जैसे बाल हों तो वो कैसा लगेगा, और इसके लिए लेकिन मैंने ओवरबोर्ड नहीं गया। अगर मैं ओवरबोर्ड जाना तब होता कि मैं अपने जो ये जो नहीं होते आईब्राउज, ये भी छोटे करा लेता। मैंने कहा इसको रहने देते हैं, बाकी चीजों को करके देखते हैं कैसे लगेंगे।
1: ठीक है लाला, ये तो फिर हम भी देखेंगे फिर।
0: ये नहीं देख पाएंगे आप इंशाल्लाह। जब तक चीज आपकी विजुअल्स के हिसाब से, एस्थेटिक्स के हिसाब से ठीक नहीं होती, हम नहीं पेश करेंगे। क्योंकि आप अपना, आप मुझे बताएं, आप जब केक बनाती हैं तो किसी को आधा अधूरा बना हुआ केक पेश करती हैं?
1: नहीं नहीं आधा, बिल्कुल नहीं।
0: बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि वो लोग आंख भाती चीज होनी चाहिए, या पूरा बन जाएगा, उसके ऊपर तह लग जाएगी, उसके ऊपर जो भी नोक पलक संवार ली जाएगी, फिर आप उसको पेश करेंगे अपने महबूब लोगों को, ना ऐसे ही होता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: दो चीजें, एक उन लोगों की रिस्पेक्ट जो आप करते हैं उनको बुरा ना लगे, लगे कि उनको रिस्पेक्ट फील हो कि इतनी मेहनत की गई है, और दूसरा चीज आपकी क्रिएटिविटी है, इसको आप बेस्ट फॉर्म में पेश करना चाहते हैं। इन दोनों को मिला के आप देखेंगे तो इससे आपकी वैनिटी जो है वो भी गायब हो जाती है। सोचता है आदमी इस तरह, ये वैनिटी के लिए नहीं है कि मैं अच्छा लगूं, मैं जैसा हूं मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही लग सकता हूं, यही हमारी नाक है, यही छोटी छोटी हमारी आंखें हैं, यही मीडियम से हमारे सख्त किस्म के कान हैं। ये मैंने किसी को नहीं कभी बताया, मेरे कान इतने सख्त हैं कान से बंदा मार सकता हूं मैं।
1: ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना
0: ये
1: है
0: मुझे भी अभी
1: काम।
0: ख्याल आया जब मैं देख रहा स्क्रीन के ऊपर, तो क्योंकि मेरा दोस्त जब हम लड़ते थे ना आपस में, तो कभी कभी ना सर मारते थे या नाक मारते, तो मुझे कहता था जालिम तू नाक से बंदा मार सकता है,
1: अल्लाह
0: तो मुझे उसे हंसी आ।
1: तो आजाद लाला माशाल्लाह से आप बहुत, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। तो आप किसी की पिक्चर देख के बस बता सकते हैं कि ये बंदा
0: हाँ जी,
1: सीधा है, ये
0: बहुत दफा बताया,
1: चालाक है।
0: बहुत दफा बताया मैंने, और अगर आवाज सुन लूँ कोई एक आध 2 मिनट का क्लिप सुन लूँ तो भी बहुत कुछ मैं बताता हूँ लोगों के बारे में, और उसके अलावा अगर मैं मिल लूँ आपसे और काम कर लूँ तो फिर तो मैं आपकी पूरी जिंदगी ऊपर नीचे बता सकता
1: तो यानी पिक्चर से आप
0: हूँ। हाँ जी, ज्यादातर
1: बता
0: लोग यही
1: सकते।
0: कहते हैं कि वो ऐसा ही होता है, और कैसे पता है आपको, कैसे इतनी सी बात से आपने पता लगा ली, फोटो देख के आपने इस बंदी का बता दिया कि इनका माइंड सेट कैसा होना है या मिजाज कैसा होना है। तो मैं हंस पड़ता हूँ, मैं इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता बाय द वे, ये कोई कमाल नहीं है और ये कोई नेक होने की निशानी या पहुंचे हुए होने की निशानी नहीं है, ये इंट्यूटिव माइंड जो आपका होता है, जो कि साइड ऑफ द ब्रेन होती है, उसमें डायरेक्ट जो पहली सोच आपको आती है, क्योंकि आप उस सोच को चेक नहीं रखते या आप उसके ऊपर नहीं कि मुझको ऐसा पेश करना है या मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, जब आप इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं तो आप चीज़ें देख सकते हैं, कोई इंसान भी देख सकता है। अगर वो नहीं देख सकता तो इसका मतलब है वो चाहता है कि वो एक सर्टन तरीके से सामने आए, वो चाहता है कि जी वो उसको इसके बदले कुछ चाहिए या इसके बदले उसको पैसे चाहिए या इसके बदले इज्जत चाहिए, इसके बदले नाम मुकाम चाहिए। आप इन सारे चक्रों से जब बाहर निकलेंगे, फ्री थिंकिंग जब आप करने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत सारे लोग हैं, अगर मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बताया भी हुआ है ये शो के बाद, किसी शो में आके कुछ लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर कभी बताना भी चाहेंगे, और बहुत सारे लोगों को मैं मना करता हूँ। आपको पता है मैं जिन लोगों की काउंसलिंग करता हूँ या जिन लोगों को मैं कुछ बातें समझाता हूँ, पहली शर्त ये होती है आप किसी के साथ ये बात शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह दुश्मनें भी बढ़ जाती हैं उनके, जो जिंदगी बाकी लोगों को वो बताते हैं तो वो हम पे वो समझते हैं हमने को पर्सनली ऐसा किया है, तो कुछ ऐसी बातें, तो इसलिए मैं बहुत कम, एक तो मैं लोगों से पर्सनल बात का मशवरा मैं बहुत कम, जब तक मैं किसी को जानूँ ना या इस काबिल ना समझूँ या मैं उसका हक ना समझूँ कि मुझे बताना चाहिए इनकी ज़िंदगी आसान होगी, तब तक मैं पर्सनल किसी के बात में बताता नहीं हूँ। लोगों से मैं पूछता हूँ, आप ये साइकोलॉजिस्ट तो नॉर्मली सुन लेते हैं बैठ के, आपने गुबार निकाला तो आप चले गए, लेकिन मैं नॉर्मली लोगों को सिचुएशंस देता हूँ, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाए तो आप क्या करेंगे, मैं उनको सोचने के तरीके बताता हूँ, सोचते भी वो खुद हैं फिर और उसके बाद डिसीजन भी वो खुद लेते हैं। ये और बात है कि जो कुछ भी वो सोच के आए होते हैं जाते हुए बिल्कुल वो चीज़ें उनके जहन में नहीं होती, क्योंकि ये सोचने का तरीका उन्होंने नहीं किया होता। फिगर आउट।
1: नहीं आजादला, तो आजादला अभी जो आप ये बात कर रहे थे इससे मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, वो ये कि आजादला आई एम वेरी
0: लेकिन
1: गुड
0: एक
1: एट
0: बात,
1: कीपिंग सीक्रेट।
0: एक पॉइंट बहुत अच्छा है अभी आया है, कोई
1: अच्छा
0: इंसान भी किसी की तस्वीर को देख के, आवाज़ को सुन के या उसके साथ छोटी मोटी डील करके, छोटी मोटी डील की बात करो। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी, दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी दी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: किसी किस्म की चेंजेस नहीं हुई, ये ईमान लाना भी जरूरी है। अल किताब, किताब और अल किताब में फर्क है ना कि नहीं? किताब तो कोई भी किताब हो सकती है, और अल किताब खास किताब, और सारी की सारी किताब। जैसे अल हम्द का क्या माना किया था? सारी तारीफ। तो अल किताब यानी ये सारी लाम जो है ना इस्तगराक के लिए, हर चीज इसमें आ जाती है जो भी इसमें है। अब मुत्तकीन की कुछ सिफात बता दी गई हैं कि मुत्तकीन कौन है। अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, जो ईमान रखते हैं। ईमान क्या होता है? मान लेना, दिल से, जबान से और अमल से। किसी चीज को मानना दिल से, जबान से और अमल से। युमिनूना बिल गैबी, गैब पर। गैब का लफ्ज है उन चीजों के लिए आता है जो निगाहों से ओझल हो, जो नजर ना आए। गैब क्या है? जो नजर ना आए। तो हमें बहुत सी चीजें नजर नहीं आती, मसलन इस दीवार के पार क्या है, आपको तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो फिर तकवा के लिए जरूरी है कि ईमान लाया जाए कि इस दीवार के पार जो कुछ है वो सब मानती हूं मैं। क्या मतलब है फिर? जिन चीजों को मानने के लिए कहा गया है, यानी अल गैब है, गैब नहीं है, क्या है? अल गैब। तो अल का कोई मतलब है ना फिर, खास गैब की चीजें जिन पर ईमान लाने का हुक्म है। और कौन कौन सी चीजें हमें नजर नहीं आती? नंबर एक अल्लाह सुबहान ताला, नंबर दो फरिश्ते, नंबर तीन आखिरत, जन्नत जहन्नम हमने नहीं देखी लेकिन हम मानते हैं, और अंबिया हमने नहीं देखे, ठीक है। तो युमिनून बिल गैब, जो ईमान लाते हैं गैब पर, वो मुत्तकी होते। अच्छा, गैब का ऑपोजिट क्या होता है? हाजिर। अगर ये कहा जाए वो हाजिर पर ईमान लाते हैं तो इसमें कोई कमाल की बात है? मसलन आप ये कलम देख रहे हैं, अगर कोई कहे मैं इस कलम पर ईमान लाती हूँ, इसमें क्या कमाल है? सबको नजर आ रहा है, सब देख रहे हैं, कमाल किसमें है कि जो नजर नहीं आ रहा और हमारे खालिक ने कहा उस पर ईमान लाओ, और हम कहें हम मानते हैं, आपने कह दिया हमने मान लिया, समय ना व अताना। वरना देख के मानना तो मानना नहीं, देख के कौन माना था? फिरौन, फिरौन माना था देख के। उसने जब देखा के मौत के वक्त वो फरिश्ते नजर आए होंगे, उस वक्त कहा जब डूबने लगा कि मैं रब्बे मूसा पे ईमान लाता हूं, तो उस वक्त क्या कहा गया? अब ईमान लाए, अब तो ईमान लाने का फायदा ही कुछ नहीं, अब तो ईमान लाने का वक्त नहीं, वो तो हो गया, गुजर गया। तो तकवा की पहली अलामत क्या है? अल्लाह से डरने की पहली अलामत क्या है? गैब पर ईमान। और गैब क्या है? अल गैब, जिस पर अल्लाह ने ईमान लाने को कहा, और जिस पर उसने ईमान लाने को नहीं कहा उसको हम माने या ना माने कोई बात नहीं। मसलन अगर आपने कोई चीज अपनी आंखों से नहीं देखी और कोई आपको बताता है, मतलब कोई आपको बताता है कि जनाब समुंदर की तह में फुलां और फुलां जानवर पाया जाता है, आप कहे मैं नहीं मानता, तो आपके कोई ईमान में खलल हो जाएगा? क्यों क्यों खलल नहीं हो? क्योंकि अल्लाह ने आपको नहीं कहा कि आप जरूर माने कि समुंदर की तह में कोई जानवर है या नहीं। आपने पढ़ा होगा कि आग के अंदर भी लाइफ है, अब आपके मैं नहीं मानती तो बेशक ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमान में कोई खलल नहीं आता। तो ईमान बिल गैब का मतलब क्या है? उन हकीकतों को मानना जिनको मानने के लिए कहा गया है, दिल से भी यकीन, जबान से इकरार। क्या कहना चाहिए? आमंतु बिल्लाह, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाए, व मलाइकती और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबी और उसकी किताबों पर, व रुसुली और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वल कद्री खैरी व शर्री अच्छी बुरी तकदीर पर, मिन अल्लाह ताला के अल्लाह की तरफ से है, वल बाथ बादल मौत और मौत के बाद दोबारा जी उठने पर, और अमल से उसकी तस्दीक। मुत्तकीन की दूसरी सिफत, व युकीमून अस्सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं। युकीमून, अकाम युकीमु इकामत, इकामत का मतलब होता है सीधा करना। अरबी जबान में जब लकड़ी को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया जाता है, काट के छील के उसको स्मूथ कर दिया जाता है, तो उसके लिए लफ्ज होता है अकाम अल उद कहते हैं, यानी कि लकड़ी को सीधा कर दिया। तो किसी भी चीज को जब सीधा कर दिया जाए, ठीक ठाक कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं इकामत। बाजार में जब खूब रौनक हो जाती है तो अरबी में कहते हैं अकाम सूक, कि बाजार सीधा हो गया, यानी काम चल पड़ा, शुरू हो गया, बाजार गर्म हो गया। तो युकीमूना का मतलब है वो कायम करते हैं। कायम करने का मतलब ये नहीं कि कोई नमाज लेटी हुई थी तो उसको उठा के सीधा खड़ा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि नमाज के लिए जो शरायत हैं, अरकान हैं, उनको पूरा करते हैं। नमाज कायम करने का मतलब क्या है? नमाज को उनकी शरायत और अरकान के साथ अदा करते हैं। वो क्या है? नमाज की शरायत क्या है, अरकान क्या है? सबसे पहले तो वक्त की पाबंदी और किबला की तरफ रुख करना और तहारत, नियत। अगर नियत के बगैर आप सब कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं। और तरीका दुरुस्त होना, जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पढ़ा है उसी तरह पढ़ना। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे तो एक शख्स नमाज पढ़ के जल्दी से तो आपके पास आया और उसने आके आपको सलाम किया। तो आपने फरमाया इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज पढ़ी नहीं। वो दोबारा गया और उसी तरह जल्दी जल्दी करके वापस आ गया, आके सलाम किया। आपने फरमाया इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। फिर वो पढ़ पढ़ा के आ गया। आपने फिर फरमाया इरजा फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उसने फिर कहा क्या मुझे बता दीजिए कि कैसे पढ़नी। तो फिर आपने उसको तरीका बताया कि किस तरह जब तुम खड़े हो तो सीधे खड़े हो और इस तरह किरात करो, और फिर जब रुकू करो तो इत्मीनान से रुकू करो, जब रुकू के बाद खड़े हो तो इत्मीनान से खड़े, और जब सजदे में जाओ तो टिक के सजदा करो, फिर उठ के बैठो इत्मीनान से बैठो, फिर दोबारा इत्मीनान से। तो ये जो इत्मीनान से नमाज पढ़ना है, जिसको तादील भी कहते हैं, ये क्या है? नमाज का रुकन है। उस शख्स ने क़याम भी किया था, रुकू भी किया था, सजदा भी किया था, वो सब कुछ पढ़ा था जो पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद क्या कहा गया? तुमने पढ़ा ही कुछ नहीं, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। हम में से बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन कैसे पढ़ते हैं? रुकू में जाते ही हैं, अभी टिकते नहीं तो खड़े भी हो जाते हैं, और अभी खड़े होते नहीं कि आधे से ही नीचे चले जाते हैं, और अभी सर लगता ही है कि उठ के भी बैठ जाते हैं, और अभी बैठते ही हैं कि फिर हिलते हुए वापस पलट जाते हैं। ये चीज नमाज के अदब के खिलाफ है। हम सबको यकीमून असलात में अगर एक बात याद रह जाए और वो क्या है? इत्मीनान, सुकून से नमाज पढ़ना। एक किताब है नमाज नबी, कैसेट्स भी उसकी मौजूद हैं, अगर आप यकीमून असलात के ऊपर अमल करना चाहें तो वो बहुत फायदेमंद किताब है आपके लिए। वह यकीमून असलात, और वो नमाज कायम करते। सलात का लफ्जी माना होता है दुआ, और इसमें असलात, असलात में फर्ज और नफल सब आता है। ये सलात का मतलब दुआ होता है, असलात का मतलब दुआ नहीं है। असलात का मतलब खास तरीके पर अदा की हुई सलात, क्योंकि बाज लोगों ने इसका माना क्या लिया जी, सलात का मतलब है दुआ करना, बैठे बैठे जहां दिल चाहे दुआ कर लो, बस हो गई नमाज। ये नहीं है मुराद असलात से। असलात से क्या मुराद है? खास तरीके पर अल्लाह की इबादत करना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताई। वह यकीमून अस्सलाता, जो अल्लाह से डरते हैं उनके अमल में क्या होता है? वो नमाज की पाबंदी करते हैं, वो सही तरीके से पढ़ते हैं, खुशू खुजू से पढ़ते हैं। वह मिन मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, वह मिन मा, और उसमें से जो रजक ना हम, रिस्क दिया हमने उनको। रिस्क हर नफामंद चीज को कहते हैं। रिस्क क्या है? हर फायदामंद चीज, जो फायदामंद चीजें हमने उनको दी हैं, वो क्या करते हैं? युन फिकून, सिर्फ खुद नहीं अपने ऊपर खर्च करते बल्कि उसे आगे भी देते, उसे रख नहीं लेते खर्च करते। युनफिकून इन्फाक से, युनफिकून का लफ्ज़ जो है नून फे काफ से है, अनफक युनफिक इन्फाक, नफक कहते हैं सुराख को, इन्फाक कहते हैं सुराख करना। तो युनफिकून यानी जो हमने उनको दिया है उसको वो आगे भी देते हैं, खर्च करते हैं, और खर्च करने में माल भी है और दीगर चीजें भी। अगर यहां सिर्फ माल भी मुराद लिया जाए तो इससे मुराद ज़कात, सदकात सब चीजें और नफकात, तीन लफ्ज़ लिख लेंगे, ज़कात सदकात नफकात। ये आप देखें तीन लफ्ज़, ज़कात वाजिबा, सदकात मुस्तहबा और नफकात लाजिमा, ये युनफिकून में आता है। ज़कात वाजिबा का क्या मतलब है? फर्ज की अदायगी, अगर किसी के पास एक साल तक इतना माल हो जिस पे ज़कात आती हो तो वो 2.5% के एतबार से उसको साल के आखिर में अपने माल में से लाजमी निकालेगा, दैट इज़ ज़कात। और सदकात मुस्तहबा का क्या मतलब है? अपने पसंद शौक खुशी से फी सबीलिल्लाह जब जितना चाहे दे। और नफकात लाजिमा क्या है? कि जहां अल्लाह ने खर्च करना लाजिम कर दिया वहां खर्च करे, जैसे बीवी बच्चों का नान नफका लाजिम है, ये भी दीन का हिस्सा है, तो उसको भी खर्च करते हैं। ठीक है, ज़कात वाजिबा, सदकात मुस्तहबा यानी अपनी मोहब्बत से पसंद से, और नफकात लाजिमा, लाजमी खर्च करना जहां जरूरी है, हाँ वो ज़कात नहीं, वो सदका नहीं, वो क्या है, जिम्मा है आपके, आपको यू हैव टू डू। लेकिन याद रखिए कि इन्फाक की शरायत हैं, नंबर एक इसराफ ना हो, इसराफ क्या है, ज़रूरत से ज़ायद ना हो खर्च करना। नंबर दो बुखल ना हो, बुखल क्या है, जहाँ करना चाहिए वहाँ ना करना। और नंबर तीन इक्तिसाद हो, कि जो जितना करना चाहिए वो इंसान करे, ना इसराफ ना बुखल बल्कि क्या, इक्तिसाद, इक्तिसाद एतदाल के साथ खर्च करना। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر اف ایم
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Ibn Umar radiyallahu anhu narrates in a hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajul min al-ansar wa huwa ya'idu akhahu fi al-hayaa. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of iman.
4: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه مسلم وكذلك البخاري والنسائي وابن ماجه.
7: On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, When Allah decreed the creation, he pledged himself by writing in his book which is laid down with him, My mercy prevails over my wrath. It was related by Muslim, also by Bukhari, and Nasa'i and Ibn Majah.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqah fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
9: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
10: Suleiman Rafiq,
11: Leo Nizal,
12: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
11: Tune in on 105.1 FM.
12: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
9: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
14: Assalamu alaikum and welcome to all my listeners. Here are we once again with the show on Inspire FM. And the show is called Family Matters. As we have previously discussed about lots of things in families and family matters, we discussed about communications, and then we discussed about the responsibilities. Ab, main aapki host Afsha aur mere saath hai Hajra. To chale Hajra, aaj hum jab baat kar rahe the responsibilities ki, ठीक है, तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि दोनों को आपस में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना चाहिए. ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है, ये हमारा कल्चर तो है. ठीक है, कुछ चीजें में कल्चरल आ जाती हैं, कुछ चीजें में रिलीजन प्रोस्पेक्टिव से आ जाती हैं, और एशियन एक डिफरेंट कल्चर है, यूरोप एक डिफरेंट कल्चर है,
15: इंटायरली
14: डिफरेंट है. तो आज हम बात करते हैं अरेबियन एंड मिडल ईस्टर्न कल्चर. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सिलसिले में?
15: ओके अफशान, थैंक यू सो मच और वेलकम एवरीवन जो भी सुन रहे हैं हमें इंस्पायर एफएम 105.1 से. 07779481822 इज द नंबर दैट यू कैन ड्रॉप योर मैसेजेस ऑन. एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक रिगार्डिंग द प्रोग्राम दैट यू हैव लिसन्ड सो फार हमें जरूर बताएं, बिकॉज योर कंट्रीब्यूशन, योर फीडबैक इज द वन थिंग दैट आर प्रोग्राम इज गोइंग टू ग्रो ऑन Inshallah. Or as we proudly say that this program is going to relate to every one of you out there, whether you are a single parent, whether you are living in joint family, whether you are a teenager, whether you are from any different race, culture or background, this program is going to relate to you. Or jaise Afsha aapne pucha ke humne apna last episode mein humne डिस्कस किया था कि एशियन कल्चर में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डिवाइड करते हैं. तो बिकॉज वी हैव सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें अरेबियन कल्चर भी आता है, जिसमें अफ्रीकन कल्चर भी आता है. तो अरेबियन कल्चर में जैसे दे आर बिगर फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज, और उसमें क्योंकि the families, the children are living so close by, to usme responsibilities, especially on female again, they are huge. Taking care of the children, taking care of the household, and then extending family relationships, grandparents, uncles, aunts, they are living close by. Or hospitality is one of the part of Arabian culture, that they are very hospitable. They are generous and they are amazingly hospitable. So jab aap, you are belonging to a hospitable culture, to usme you have a slightly extra responsibility on your shoulders when you are having your friends over or you are having your family over your place. So you must be having quick ways to set a table and or the dinner or some meal for your guests.
14: बिल्कुल, उसमें तो जितनी बड़ी फैमिली होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतना ज्यादा आना जाना होता है, उतनी बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, और उसमें आप बेसिकली सुपरवुमन सुपर सुपर सुपर वुमन बन जाते हो. क्योंकि विद इन आवर्स, जैसे अगर एक घंटा है दो घंटे हैं और आपको 10 डिशेस तैयार करनी है, और आपने ना सिर्फ डिशेस तैयार नहीं करनी, अपने घर को मेंटेन करना है, अपने मेहमानों के बैठने की जगह बनानी है उनके लिए. और हमारे यहाँ का कल्चर है ना, मेहमान आएंगे तो अच्छे बर्तन निकालेंगे जो कि सदियों से किसी ना किसी अलमारी में पड़े होंगे और निकालेंगे.
15: और इसके साथ साथ मेहमानों को खिलाना भी है कि आपने, यू हैव टू मेक श्योर दैट द गेस्ट्स आर वेल फेड.
14: वेल फेड, हाँ, आप डालें ना, आप खाएं ना, कबाब ले ना, बिरयानी ले ना, यू आर द होस्ट बट विद एन एक्स्ट्रा ड्यूटी और लाइक प्लेटिंग एवरीथिंग इनटू एवरीबॉडी. ठीक है, और ये एक नेचुरल कल्चर. अच्छा, मजे की बात ये होती है बालों का, तो साथ आप 10 चीजें खिला लो, लेकिन समटाइम्स लाइक यू नो मियां को इतना, तुमने उनको कबाब तो पेश ही नहीं किया था, वो तो यहाँ पड़े
15: हुए. दे हैव लेफ्ट हंग्री, व्हाई इज दैट सो.
14: तो ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है. इसकी खूबसूरती भी है ना, उसकी खूबसूरती ये है कि जब आपके घर कोई आता है, आप उसको अच्छे से बिठाते हो, अच्छे से खिलाते हो, उसकी इज्जत करते हो, तो ये आपके बॉन्ड को बहुत, आपकी फैमिली के बॉन्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी कर देता है.
15: अगेन अफशा, आई वुड से दैट विद गुड कम्युनिकेशन, विद गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अमंग ऑल द फैमिली मेंबर्स, इट इज पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट गुड कम्युनिकेशन. एंड अगेन, जब आप अपना एक म्यूचुअल इंटरेस्ट बना लेते हैं, फैमिली की हैप्पीनेस को, बच्चों की प्रोग्रेस को, बच्चों की वेलबींग को, अपनी फैमिली की वेलबींग को, और इफ यू आर सेंट्रलाइजिंग ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ योर फैमिली मेंबर, तो आपका जो एंड रिजल्ट होता है दैट इज वेरी पॉजिटिव. कि आपका फिर हर फैमिली मेंबर एक विन-विन सिचुएशन पे होता है कि आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, ही इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, सो एवरीबॉडी इज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे.
14: बिल्कुल, क्यों नहीं. आप खुद देखें, हम लोग कहीं पे जाते हैं, किसी के घर भी मेहमान बन के जाते हैं, और अगर वो हमें अच्छे तरीके से वेलकम नहीं करता, या अगर वो हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं करता, या अगर वो हमारे, वैसे हम तो थोड़े से वो भी होते हैं ना कि हमें तो डाल के नहीं दिया प्लेट, वो डोंगा तो रखा हुआ था, डोंगा तो हमारे सामने रखा ही नहीं, डिश तो हमारे सामने रखी नहीं, तो हम डालेंगे कैसे. ठीक है, तो यस, इट मेक्स अ डिफरेंस. You are being seen and you are being heard. ठीक है, तो ये नहीं होता कि आप सिर्फ खिला रहे होते हैं, बेसिकली वो जब आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे होते हैं, इट्स कम्युनिकेटिंग. ठीक है, आप उससे बात करते, आपके जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग होता है, टेकिंग केयर होती है, वो उस वक्त सामने आती है, आप कनेक्टेड होते हैं.
15: लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, उसमें एक और चीज भी है अफशा, एंड बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड से दैट देयर इज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम आवर साइड टू ऑल आवर लिसनर्स, के वी डू अप्रोच कल्चर एंड रिलीजन, एंड वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू एवरीवन ऑफकोर्स. सो वी जस्ट we do show our respect to every culture and every religion out there.
14: हाँ बिल्कुल, हमारे लिए हर चीज जो है तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, हम ऑनर करते हैं. बस बात ये होता है कि ये चूंकि फैमिली है ना, और मैं और हाजरा फैमिली है, तो हम इस में हर वो चीज डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारी फैमिलियों से रिलेट करती है, या जहाँ पे अप्स एंड डाउन हम लोग को फेस करने पड़ते हैं, या बच्चों की परवरिश, या हमारे घर के कुछ ऐसे मामला जहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ बात करने की जरूरत है. तो ये वो फैमिली मैटर्स शो है जहाँ पे हम खुल के सब कुछ बोल रहे हैं, उस चीजों पे बात कर रहे हैं जो कि हम लोग ने महसूस की हैं, हम लोगों ने देखी हैं, हम लोगों ने रियलाइज की हैं, एक्सपीरियंस की हैं. तो आप और आई एम 100% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग भी इन सब चीजों से रिलेट करते होंगे. तो हमें आपकी फीडबैक का, आपके क्वेश्चंस का, आपकी लाइकिंग का, हर चीज का इंतजार रहेगा. और वो आप हमें कॉल करके और हमारे व्हाट्सएप पे करके बता सकते
15: 07779481822. और जिन्होंने अभी हमें, जिस ऑडियंस ने अभी हमें, चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, चाहे आप घर पे कुकिंग कर रही हैं, वेदर यू आर अ टीनेजर लिस्निंग टू आवर शो और आपने अभी ट्यून इन किया है, तो यू कैन ड्रॉप अस अ मैसेज, यू कैन कॉल अस एंड गिव योर फीडबैक. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट अ टॉपिक टू बी इंक्लूडेड इन आवर शो द फैमिली मैटर्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. वी आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्लूड ऑल योर मैसेजेस एनोनिमस और विद आइडेंटिटी, व्हाटएवर यू वांट टू, हाउएवर यू वांट टू डू इट, वी आर गोइंग टू इंक्लूड इट. और टेकिंग इट फर्दर, अफशा, जब हम कल्चर्स की और रिलीजन की बात करते हैं, तो जो हमारा एशियन कल्चर है और जो हम मिडिल ईस्टर्न या अरबिक कल्चर में देखते हैं कि जो हमारा एक कम्युनिकेशन का एक लेवल होता है पेरेंट्स के साथ या एल्डर्स के साथ, तो इफ़ यू आर इंगेजिंग इन फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, इट्स अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन. बट वट एल्डर्स और योर पेरेंट्स आर थिंकिंग दैट यू आर आर्ग्यूइंग विद देम,
14: there's always a chance of that. ठीक है, हमेशा इसका खतरा तो रहता है. हम सारी चीज में होती है, मैंने अभी, हमने पहले डिस्कस किया था कम्युनिकेशन पे. अगर आपकी कम्युनिकेशन गुड है तो वो समझ जाएंगे. लेकिन जब भी आप बात करें अपने एल्डर्स के साथ, आप उनसे इख्तिलाफ करते हैं, ठीक है ना, आप उनकी बात से एग्री नहीं करते, You don't have to be rude. You don't have to be very loud. देखिए, मैंने पहले भी कहा था, respect और respect में एक बहुत thin line होती है.
15: Yeah, there's a very thin line.
14: बहुत thin line होती है. कभी-कभी हम हाजिर जवाबी की कोशिश में कि यार हमें ज्यादा पता है, हम वो thin जो respect की line है उसको हम cross कर जाते हैं. हमें अपने mind में उसको रखना चाहिए. पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने में या डिस्कशन करने में देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. यू जस्ट नीड टू वॉच आउट फॉर योर टोन, फॉर योर वे ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर द बेस्ट थिंग टू डू इज वेरी पोलाइट, अंडरस्टैंडेबल बट फर्म. इफ यू थिंक यू आर, यू हैव द राइट टू मेक अ डिसीजन, बी अ फर्म पर्सन, नॉट टू बी रूड, नॉट टू बी आर्ग्यूइंग, नॉट टू बी बीइंग मिसबिहेव्ड, बट जस्ट फर्म. A low tone, a soft tone, and a firm tone makes more difference than ladai, jhagda, unchi awaaz.
15: Yeah, but everything in its place, like the respect element and the low tone and everything, the parents or the elders, they have a perception in their mind if their decision is being challenged, the other person is talking back to us.
14: I think in that case, agar aapke samne koi aisi situation aati hai ki aap baat kar rahe hain aur aapke parents annoy ho rahe hain ya offend ho rahe hain ki wo samajh rahe hain shayad ye hamari baat se argue nahi kar rahe, stop, us mauzu ko udhar hi chhod de, theek hai, step back, change the topic, aap log aaram se kisi aur cheez pe baat kar le. याद रखें कि जिस वक्त एक एज होती है आपके पेरेंट्स की, जिन्होंने आपको बड़ा किया, आपको पाला, आपकी शादियां की, अब वो उस मकाम पर आ गए हैं जहां पे उनका बिहेवियर एक बच्चे जैसा होगा. आप बच्चे के साथ जिद करेंगे, बच्चा आपके साथ जिद करेगा.
15: एंड यू डेफिनेटली हैव टू कंसीडर दैट जनरेशनल गैप, जिसमें एक कम्युनिकेशन गैप भी डेवलप हो जाता है, कि वो दैट इज नॉट covered in most of the cases.
14: बिल्कुल,
15: क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जो जनरेशनल गैप की वजह से आता है, वो आपका बहुत कम केसेस ऐसे मैंने देखे हैं जहां पर पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में वो गैप कवर हो जाता है. इट्स देयर,
14: यूजुअली इट स्टेज, यूजुअली इट स्टेज. हमारे बच्चे कहते हैं अम्मी आपको पता नहीं, मतलब इट्स अ कॉमन थिंग. हम उनको सब कुछ सिखा के समटाइम्स अपने बच्चों से कहती हूँ, बेटा हमने आपको इतना बड़ा किया है, वी नो, लेकिन दे थिंक के दे नो. तो इसी तरह जैसे जैसे आपके बड़े हो, आप बड़े होते जाते हैं, यू थिंक यू नो, लेकिन उस वक्त यस राइट. आजकल की जनरेशन है, आजकल जो नॉलेज है, आजकल की जो आपको जो है तो एक्सपोजर है, वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली आपके पेरेंट्स से. फिर वही बात आ जाती है कि यू डोंट नीड टू बी लाउड, यू डोंट नीड टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, यू डोंट नीड टू बी हार्श, यू जस्ट नीड टू बी वेरी सॉफ्ट, वेरी काइंड, लो टोन्स एंड फर्म. ये वो चीज है और इसमें कम्युनिकेशन है. अगर आपका कम्युनिकेशन आपके पेरेंट्स के साथ अच्छा है, यू आर गुड टू गो.
15: ठीक है. सो कमिंग टू अनदर डिफरेंट कल्चर, दैट इज द इंग्लिश कल्चरल पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक कि जब when they are involving their children from a very young age into household chores and putting responsibilities, light responsibilities on their shoulders until they grow up, what do you think about that? Is it helping a child to take responsibility at the end of the day when they grow up, or it is just burdenizing them?
14: Well, agar main apne perspective se baat karun, the thing is, every culture has some good and some bad things. ठीक है ना. हमारे कल्चर में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ बहुत बुरी. ठीक है. इसी तरह इस कल्चर में भी कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत तो शायद मेरे हिसाब से वो सही नहीं है. देखिए, आप एक बच्चे के ऊपर जिम्मेदारियां डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारियां डालने के साथ साथ आप उसको गाइड भी करें. और जिम्मेदारियां जब जाने डालते हैं तो उसके साथ साथ एक बाउंड्री भी क्रिएट करें. होता क्या है, आप एक बच्चे को छोटे छोटे काम कर रहे हैं, आप उसको पैसे दे रहे हैं, आप उसको ट्रीट दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देख रहा है, पूरी भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है, अर्न भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ आप उसके ऊपर चेक जरूर रखें. अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आप उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन साथ उसको सही और गलत का फर्क भी बताते रहें. क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बच्चे को फ्री हैंड दे देते हैं, या आप समझते हैं कि यार नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब हर तरह की हैंडल कर लेगा या कर रहा है, इवन ही इज लाइक अ माइनर और टीनेजर, ठीक है, अगर टीनेजर है तो आप उसको कहते हैं नहीं यार, ये बाहर जाके तो जॉब करता है, ये पैसे कमा रहा है, कीप अ चेक, कहाँ जॉब करता है, कितना अर्न करता है, कैसे लेके आता है, कहाँ स्पेंड करता है. यस, ही हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा ली है, ही इज पेइंग फॉर हिज एक्स्ट्रा खर्चे और ही इज लाइक बीइंग अ वेरी नाइस चाइल्ड, लेकिन इज ही गेटिंग द मनी अकॉर्डिंग टू व्हाट ही इज डूइंग. ठीक है, इज यो जिन दोस्तों के साथ वो जा रहा है, आर दे सेफ? आजकल के तो एनवायरमेंट में आपको पता है ना. तो यस, बिल्कुल, यूरोप में ये होता है कि बच्चा 16 साल का होता है, जॉब कर रहा है, 18 साल का होता है, घर छोड़ के चला जाता है.
15: तो व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू जस्ट सेड दैट इफ यू आर पेइंग हिम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाउसहोल्ड चोर्स इन रिटर्न टू डूइंग हाउसहोल्ड चोर्स, इज ही गोइंग टू गेट पेड व्हेन ही इज एक्चुअली स्टेपिंग इन टू द प्रैक्टिकल लाइफ फॉर ऑल दोज हाउसहोल्ड चोर्स, जब उसको अपने घर के काम करने पड़ेंगे तो ही और शी इज नॉट गोइंग टू गेट पेड फॉर दोज जॉब्स. तो इज इट लाइक सेंसिबल फॉर अस टू पे फॉर दोज, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज इट बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ फैमिली. ओके, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर लिविंग हेयर, दे ऑल्सो शेयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट एट अ सर्टन एज दे शुड बी डूइंग दीज फ्यू थिंग्स.
14: वही बात आ गई, मैंने कहा जब आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, उनको आप कुछ ना कुछ देते हैं, तब आप उनको सही और गलत भी बताते हैं ना. ठीक है, छोटा बच्चा है, उसको इनकरेज करने के लिए आप चलिए अगर पैसे नहीं देते, आप गिफ्ट देते हैं, लेकिन एक सर्टन एज पे आएगा जब वो बच्चा टीन एजर में होगा, यानी जैसे मेरा बच्चा जब 10 साल का हुआ था, ठीक है, उसको उसको पैसे मिले बंद हो गए थे, उसके बाद उसको मैंने पैसे नहीं दिए, बल्कि उसको मैंने ये कहा कि दिस इज योर पॉकेट मनी. I shifted the every chore money into a monthly allowance of pocket money. उसको मैंने कहा तुम अच्छे बच्चे हो, तुम ये सारे काम करोगे, this is your pocket money. So situation changes. He is getting paid monthly now for doing everything instead of being every day या रात क्यों कहती है weekends पे या उस पे क्या तुमने ये किया. He is not getting any stars, but he is being appreciated. मतलब उसको तारीफ के लिए.
15: A little bit of incentive is always good for everyone.
14: Number yes, it doesn't harm you. बिल्कुल. जब वो teenage में आया, ठीक है, तो pocket money तो already उसको मिल ही रही थी, लेकिन उसके ऊपर responsibilities बढ़ाते गए, और साथ साथ आप बच्चे को बताते हो कि बेटा this is your life experiences.
15: This is going to benefit you for the rest of your life.
14: बिल्कुल. और सारी बात है बच्चा अंडरस्टैंड करता है कि जब आप उसको बताते भी हो, आप उसको समझाते भी हो कि जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तुमने घर के काम भी करने होंगे, लेकिन सारी बात है तुम्हें कोई पैसा तो नहीं देगा, ठीक है, बट बिकॉज यू आर वर्किंग यू आर अर्निंग योर ओन मनी, बट यू आर हेल्पिंग योर स्पाउस या घर के काम में, या तुमने जिम्मेदारियां डिवाइड की. और दिस वन मोर थिंग, क्योंकि वो बचपन से एक जिम्मेदारियां लेके बड़ा हुआ है ना, तो उसके लिए कोई अनोखी बात नहीं होगी, अजीब सी बात नहीं होगी.
15: So this is how you make your children responsible when you start at a very young age.
14: Huh?
15: When you start not exactly huge responsibilities, but a little bit of something with every growing phase.
14: बिल्कुल. You table लगा दो, बर्तन उठा दो, dishwasher खाली कर दो. This is where I begin. और I remember my daughter, she was about 7 years old when she made her first fruit salad. और मैं उसको छुरी नहीं दे सकती थी, मुझे डर लगता था. तो मैंने उसे बनाना जो थे ना, तो वो उसको काटा उसने, and she used this butter knife. मैंने कहा ये बटर नाइफ से ना इसको काटो बनाना को एंड मेक योर फर्स्ट सैलड. यस, एंड आई बॉट लाइक प्री मिक्स सैलड उसके लिए लेके आई थी, सो
15: शी मिक्स्ड ऑल अप,
14: हां, ताकि वो सारी चीजें डाले. देन शी वेंट ऑन हर यूट्यूब टू फाइंड अ रेसिपी फॉर द सैलड ड्रेसिंग. शी डिड दैट एंड वी अप्रिशिएटेड. और फिर उसको हमने छोटा सा गिफ्ट दिया एंड उसके देन इट बिकम्स हर, सो एवरी डे नाउ इट्स बिकम हर ड्यूटी टू, वो सलाद बनाती है, ठीक है. यस, एंड शी वॉज 6 years old व्हेन सिक्स क्लास में थी जब उसने पहली दफा खाना बनाया था, ठीक है. और आई सेंड दिस फूड दैट शी मेड टू माई फ्रेंड, उसके मैंने घर भेजा और वो खुद देख के आई कि आंटी आज खाना मैंने बनाया है.
15: Wow, she must be so proud of herself.
14: So yes, this makes them proud and they know that we do things, we can do it. तो बात ये होती है कि यू हैव टू टेक स्टेप वन बाय वन. आप बच्चे को सिखाते हो, बताते हो, पढ़ाते हो, समझाते हो. देखिए, इस दुनिया में कोशिश करना हमारा काम है.
15: एग्जैक्टली.
14: ठीक है, सिखाना हमारा काम है क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, अपनी फैमिली को अच्छी चीजें सिखाना. आज मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे जी आसमान से उतरे हैं या दे आर द सुपर परफेक्ट चिल्ड्रन. नो, बहुत सारे बच्चे हैं, दे आर अमेजिंग, ठीक है. लेकिन हाँ, मुझसे जितना हो सकेगा, जितना उनको समझाना चाह सकती हूँ, मैं समझाऊंगी
15: बेस्ट
14: ऑफ दैट. तो हर, एंड ट्रस्ट मी, हर parent is doing the same. They are trying to do the best they can.
15: Yeah, exactly.
14: ठीक है, unseen circumstances होते हैं, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है. अगर हमारा communication strong नहीं होगा तो हमसे गलती हो सकती है. हम बच्चों को स्पेस नहीं देंगे तो हमसे गलती हो सकती है. हम अपने स्पाउस को वो नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे तो हमसे वहां भी गलती होती
15: है. A margin or a room to rectify if you have if you think that you have done anything that was not right at that moment. So there's always a room for rectification.
14: Always apologize.
15: That African culture, they we always think the whole Africa as one culture.
14: Okay?
15: which is not true, because
14: which is definitely
15: there,
14: not true.
15: So many different countries in Africa, and every country has their own culture.
14: Bilkul.
15: Has their own roles and responsibilities that they have in their household. But there is one common thing that goes throughout Africa, and their most common phenomena that goes around is Ubuntu. That is, I am because we are. Okay, so this tells us about your individual, okay, and how you form a family and how you become how you become that individual because of the support of that family.
14: हाँ, वो आपका एक वो हो गया ना, हम और वी.
15: Exactly.
14: ठीक है, I and we, हम सब इकट्ठे हो गए, ठीक है. और आपका it means कि यानी आप belong करते हो, आप exist करते हो because of us.
15: And how beautiful is that कि क्योंकि the environment makes you.
14: बिल्कुल. Okay?
15: The environment of the house. Because it's your first school that you go to, your house, so it makes you, okay. So you are made by the environment you are in. You are made by the people you are living with, okay. You are made by the family. You are made by the culture that you are living in. So the idea of I am because we are, it certainly is quite valid ke ek individual se community banti hai, or if you make a responsible citizen, if you make a responsible person jisko apni rights and responsibilities ka pata hai, to they are going to go do good. They are going to do wonders when they are going out in the community.
14: Bilkul, isme koi shak nahi. Aur yahi kaha jata hai ki insaan ki sabse pehli dars ka uski maa ki god hoti hai. To agar as a mother, aaj hum apne bachon ko, specially beton ko bhi, har wo responsibility sikhayenge jo aage leke unhone chalni hai. Theek hai? To mere khayal mein isse hum ek bahut mazboot aur strong family create karne mein madad karenge. अब अगर मैं अपने बच्चे को आज बिठा के हर चीज प्लेट में डाल के दूंगी, कल उसकी बीवी आएगी तो कहेगी ना कि मेरी सास ने क्या मेरी चीज हवाले की है.
15: Times have seriously changed. They have changed. Okay, abhi hum when we as soul sisters talk about women empowerment, ठीक है, तो हम सबको यही encourage करते हैं ना कि find a side hustle for yourself, find something that you enjoy. ठीक है, और अगर आप अपनी enjoyment के काम से अगर थोड़ा सा side में थोड़ा सा earn कर रहे हैं तो that is not a harm at all.
14: नहीं नहीं,
15: ठीक है,
14: बल्कि ये तो ज्यादा बेहतर है कि वो एक होता है ना कि आप हर वक्त अपने मियाँ के बीच में क्रेडिट कार्ड निकालो, जरा खर्चा करना है. ठीक है, इट गिव्स यू सम स्पेस, इट गिव्स यू सम लाइक योर ओन हैप्पीनेस, आपको अच्छा भी लगता है, आप कुछ बना रहे
15: हो, लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल
14: फ्रीडम
15: एज वेल, कि इट्स योर ओन मनी एंड यू आर गोइंग टू स्पेंड योर ओन मनी योर वे.
14: एग्जैक्टली, वो मैं तो हर थोड़ी देर बाद जब वो अपने मियाँ से लेती हूँ ना क्रेडिट कार्ड की, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने वो करने, तो ये सीरियसली उनके चेहरे को पता होता है कि उनका कितना बिल बनेगा और कितना खर्चा होगा ना. और मेरा तो एडवाइस ये है कि अपना जॉइंट अकाउंट अलग रखो, मियाँ को ना पता चले कितना खर्चा किया है.
15: एग्जैक्टली, बिकॉज वी नो दैट वी आर everyone is going through difficult times.
14: Exactly.
15: Inflation ko dekh le, ya aap waise duniya ke halaat ko dekh le, whatever is going on politically,
14: to politically, economically, financially,
15: to usme everything is going tough for everyone. So before we take our break, we want you to think about your own home. Ask yourself, who wakes up first, who goes to sleep last, who remembers birthdays, who books appointments and who manages finances, who notices when someone is emotionally struggling, and most importantly, are those responsibilities shared freely, fairly, and on equal basis? Not necessarily equally, but yes, fairly. Every contribution matters. We are going to talk more about equal partnerships, raising responsible children, financial responsibilities, and emotional labor, of course. Don't go anywhere. You are listening to Family Matters. 07779-481-822. We'll be right back.
10: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
16: Inspire FM.
10: Inspire 105.1 FM.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. That glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
18: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
19: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
20: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
21: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
22: This is me, Baby Bilal.
23: And it's me, Herman Giles.
22: We are here gonna tell you about the Kids Watch show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't know where he is. He's not here at the moment. Father Giles, where do you think he is?
23: Oh, well, I think he's probably sleeping somewhere.
22: Oh, okay. Well, whatever the case is, guys, make sure you tune into
23: the Kids Round Show
22: and Inspire 105.1 FM.
23: The UK's finest.
22: Okay, then.
24: Hold on a minute. Sorry I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay. This is Khalil Muhammad and...
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
15: Welcome back to Family Matters, the new show that you have been listening for last couple of weeks now. Today's topic is roles and responsibilities in the home, and also communication that we did last week. How they are interrelated and why are they so important? You are listening to the Family Matters Show. 07779 481-822 is the number that you can leave your text on, and we are going to definitely include your messages in the upcoming episodes. If we go deeper and talk about multicultural marriages, because the two different cultures are combining at one space, mm-hmm. in one house, in one home. So, Afsha, what do you think? What happens in that scenario? Like the mother, for example, is coming from a different culture. The father is coming from a different culture. I'm not saying religion, but we are focusing on the culture.
14: Okay. If it's like culture, ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं culture की, तो इसमें फिर वही बात है कि सबसे important चीज आती है communication. ठीक है. Sometimes वो कहते हैं unwritten सेटलमेंट्स हो जाती हैं, जिस तरह कि हमारे घर में या आपके घर में बगैर कहे, बगैर बोले, बगैर बताए, एक हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ही उठाने लगता है. ठीक है, पता होता है कि अच्छा यार, ये चलो वो नहीं है तो मैं ये काम कर लूँ, वो नहीं है तो मैं ये कर लूँ ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो, या वो आए तो आगे से काम हुआ हो. लेकिन बाज़ औक़ात यू नीड टू सिट डाउन
15: एग्जैक्टली
14: एंड डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आई थिंक अगर आप मल्टीकल्चरल हो, देन द बेस्ट थिंग इज टू सिट डाउन, ठीक है, एंड डिसाइड
15: थॉरली
14: Exactly.
15: Thoroughly discuss each and everything, because this is going to be a lot of debate, for cause a lot of debate in the future when you have children, when they are growing up, whose culture they are going to follow, what festivals are they going to go to, their discipline, their food, family involvement, independence, everything. Because even if you are coming from an Islamic background, your culture might saying something else if you are talking about women freedom or girls freedom. So it can be a little different from the culture of your spouse.
14: बिल्कुल. दूसरी बात ये, चूंकि time change हो गया, वक्त बदल गया है. पहले के हालात और थे, पहले शादियां की जाती थी तो बड़े बड़े कर देते थे और फिर बड़े ही responsible होते थे उस family को चलाने के लिए. ठीक है, और अब बच्चे डिफरेंट हो गए हैं. आजकल इंस्टेंट का जमाना है. इंस्टेंट मिलते हैं, इंस्टेंट इश्क होता है, इंस्टेंट शादी होती है और इंस्टेंट डाइवोर्स भी हो जाती है. अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ वेरी बैड थिंग. मतलब इवन कि हमारे इस्लाम में ये वाहिद चीज है जो हलाल है लेकिन नापसंदीदा है. ठीक है, और सिर्फ डाइवोर्स नहीं होती बल्कि पूरी फैमिली बिखर जाती है, तबाह हो जाती है. तो मेरे ख्याल में अगर आप शादी कर रहे हैं, मल्टी कल्चरल है, मल्टी फेथ है, कुछ भी है, Always remember to discuss everything. Make bound. देखिए, आपको करने के लिए अगर तो आप वाकई mutual understanding पे चलते हैं तो फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है. लेकिन yes, it's better. ये अच्छी बात है कि आप कह दें कि देखो यार ये काम है, मैं चूंकि मेरे जॉब का सीक्वेंस ये है, मेरी टाइमिंग्स ये है, तुम्हारी टाइमिंग्स ये है, तो हम इसको ऐसे और इसको ऐसे सेट कर लेते हैं. इसी तरह जब फाइनेंशियल अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो अब अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो घर की मॉर्गेज भी आएगी, बिल्स भी आएंगे, ग्रोसरी भी आएगी, वो सिट डाउन, मेक अ बजट, मेक अ लिस्ट, मेक डिवाइड एवरीथिंग सो दैट यू बोथ हैव योर ओन स्पेस और फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो आपके पास, और आपको ये भी पता हो कि आपने कितना कंट्रीब्यूट करना है.
15: And you have a clear sketched road map in front of you.
14: बिल्कुल.
15: कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ करना है, क्या किस वक्त क्या चीज कहाँ पे करनी है, एंड वट आर द चिल्ड्रन गोइंग टू फॉलो, वट स्कूल दे आर गोइंग टू गो, वट फेस्टिवल्स आर दे गोइंग टू सेलिब्रेट, एंड एवरीथिंग
14: एवरीथिंग उसको करना भी चाहिए, करना भी चाहिए. क्योंकि देखिये दुनिया में ना वो जो कहते हैं ना कि तीन चीजें ऐसी हैं जिसपे बड़े बड़े हुकूमतें तबाह हो जाती हैं, जर जन जमीन. ठीक है, जर आ गया, पैसा आ गया, जन आ गई, औरत आ गई, जमीन आ गई, लैंड आ गया. तो ये वो चीजें हैं जो कि अगर इन पे पहले से ना डिस्कशन की जाए या अगर इनको पहले से ना सोर्ट आउट किया जाए तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फस. ठीक है, आगे जाके देयर आर सो मेनी क्या कह सकते हैं कि आप प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. तो द बेस्ट थिंग टू डू इज इफ यू आर इन अ कंट्री मल्टी कल्चरल वेडिंग हाउस होल्ड और फैमिली, चाहे वो आपकी बाय फेथ हो, बाय कल्चर हो, चाहे कुछ भी हो, द बेस्ट थिंग इज टू सिट डाउन एंड मेक सोर्ट आउट करो, कम्युनिकेट करो, सोर्ट आउट करो, डिवाइड करो, बताओ के किस तरह. अच्छा, वो हम बात कर रहे थे यूरोपियन कल्चर की, तो मेरा जो नेबर है ही इज ब्रिटिश, तो एंड ही इज सच अ नाइस गाय, तो उसका इतना अच्छा होता है कि जब वो घर पे होता है तो वो वैक्यूम भी चल रहा होता है, उनकी वो लॉन भी ट्रिम कर रहा होता है, उसकी बीवी घर पे होती है तो वो कभी लॉन ट्रिम कर रही होती है, कभी जगह साफ कर रही होती है, तो दिस लुक सो नाइस.
15: या इट इज सच अ नाइस,
14: तो मतलब वो डिवाइड कर रहे हैं ना अपनी अपनी, दोनों जॉब करते हैं तो दोनों में से जो भी घर पे होता है तो फिर वो तो जो वो कर सकता है वो करे. तो आई थिंक कि हमें हमारे कल्चर का चूंकि डिफरेंट है तो मेरे ख्याल में हमें अपने कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा इस चीज को एडॉप्ट करना चाहिए, हर उस चीज को जो अच्छी हो.
15: बिल्कुल,
14: अंधों की तरह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ब्लाइंडली किसी को नहीं फॉलो करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीजें हमें हर चीज जगह से लेनी चाहिए.
15: अडैप्ट एनी गुड थिंग दैट यू कैन सी फ्रॉम अदर कल्चर्स, आप उसको अडैप्ट कर सकते हैं,
14: बिल्कुल
15: उसको एक पार्ट ऑफ रूटीन बना सकते हैं.
14: देयर
15: इज नो हार्म इन इट. सो मूविंग फॉरवर्ड, वी वांट टू गिव आवर लिसनर्स अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी. This week have a family responsibility meeting, okay? So call everyone on that meeting. It doesn't have to be formal. You don't need a boardroom, okay? You can sit around the kitchen table. Ask three questions. What needs to be done in our home? Who is currently doing it? Is the responsibility being shared fairly? ask these questions to everyone in your home, in your every member of your family, and see what reactions are coming. Don't snub anyone. Don't judge anyone. Don't interrupt anyone. Listen. And I'm talking to the head of the family that they take all the answers with open mind and open heart. And this is going to be a very beautiful activity if you start doing it on some like a fortnightly basis or however you like it.
14: एंड आई थिंक जो आपकी फैमिली का सबसे खामोश बच्चा हो ना उसको जरूर उसको बिठा कर उससे पूछे क्योंकि आमतौर पे द क्वाइट वंस होते हैं ना दे हैव मोर थिंग्स टू

0: से नहीं मिल सकेगी.
1: एग्जैक्टली टेकिंग इट फॉरवर्ड एंड डोंट जस्ट लाइक लिस्ट विजिबल टास्क लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, शॉपिंग, चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, फाइनेंसेस. टॉक अबाउट एवरीथिंग, इमोशनल सपोर्ट, प्लानिंग, फैमिली इवेंट्स, एंड देन डिसाइड वट कैन वी चेंज एंड आस्क everybody's opinion, okay? And remember, the goal is not to find someone to blame. The goal is to build a team. Maybe if you are your child, your middle child maybe, who is not talking a lot, they might be having some very good ideas in their mind about anything around the house, like garden cleaning or waste management or things like that, okay? So try to meet weekly or fortnightly on this family responsibility meeting. This is one thing that you can do. This is going to be a very good way of communication, as well as having a check on responsibilities and roles that your people are doing around your house.
2: बिल्कुल सही कहा. जब सारे बैठ के किसी चीज को डिस्कस करते हैं एज अ फैमिली मेंबर, तो आपस में एक बॉन्ड भी बनता है, ट्रस्ट भी होता है एक दूसरे पे. और एक हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली चीज है कि कहते हैं कि बच्चों को नहीं बिठाओ, वो परेशान हो जाएंगे, बच्चों को इन्वॉल्व मत करो क्योंकि वो नहीं, उनको नहीं पता. ये बड़ा एक बड़ा कॉमन, हम छोटे थे तो अक्सर जब बड़े बैठते थे तो हमें कमरे से निकाल दिया जाता था कि नहीं नहीं तुम लोगों को नहीं पता, तुम लोग जाओ. द थिंग इज बिकॉज बच्चे को नहीं पता कि क्या हो रहा है, उसको नहीं अंदाजा कि क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है. Exactly. उसको सीरियसनेस का भी नहीं पता होता, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो फिर अगर खुदा ना खासा कहीं पे उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो ही इज नॉट रेडी फॉर इट.
1: एग्जैक्टली अफशा, देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जहां पर मैं समझती हूँ कि हमारे स्पेशली द चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम एशियन हाउस होल्ड्स, दे आर नॉट ब्रॉट अप एज रिस्पॉन्सिबल और अवेयर children,
2: exactly
1: aware human beings, के उनको self defense का नहीं पता, उनको household management का नहीं पता at a very basic level.
2: Basic level.
1: And I truly believe के these things should be there in their syllabus at least. If not taught at home, it should be there in their syllabus.
2: वो ठीक है, लेकिन मैं आपकी वाली बात क्योंकि syllabus में भी होना चाहिए, लेकिन पहले जो है तो हम घर में तो इस चीज को बदले ना. देखिए, आपका बच्चा आपके घर में आपके साथ रहता है, ठीक है, वो देख रहा होता है, उसको सब कुछ नजर आ रहा होता है. जब आप उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं तो उसको सिचुएशन ज्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि अगर उसको पता नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है, उसका जहन है कच्चा जहन है, वो कोई भी चीज किसी भी चीज पे उठाकर उसको मिस गाइड मतलब कर सकता है, उसको मिस क्या कहते हैं मिसजज कर सकता है.
1: एंड बिफोर योर चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अदर्स द पीपल हु यू वोंट अप्रूव ऑफ, स्टार्ट इन्वॉल्विंग देम. जैसे आई वुड टॉक अबाउट माय यंगर सन, ही इज ऑलवेज कीन टू यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, एंड ही इज ऑलवेज सेइंग डू एनलाइटन मी विद ऑल योर प्लान्स बिफोर हैंड बिकॉज आई हैव टू मेक अप माय माइंड. सो आई मेक श्योर दैट आई डू, बिकॉज यू नो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. ओके, सो ही नीड्स सम टाइम टू गेट होल्ड ऑन everything, make a plan on his own and, you know, make up his mind and everything. So I do make sure that I tell him in advance that we are doing this and we are doing that and we'll be going to this place this weekend or things like that, whatever is coming.
2: Actually, baz bache flexible hote hain. They mold according to the situation.
1: Exactly.
2: Theek hai, baz bachon mein flexibility kam hoti hai. Mere ghar mein bhi hai. मेरा बेटा ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मेरी बेटी मतलब थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए होता है ऑब्जर्व करने में, ठीक है, हर चीज को समझने में, प्लान करने में वो टाइम मांगती है. मेरा बेटा बहुत फ्लेक्सिबल है, ही गोज विद द फ्लो. ठीक है, तो ये चीज होती है, इसीलिए आपको चीजें बच्चों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि आपका हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है. आपके एक बच्चा बहुत फ्लेक्सिबल होगा, बहुत दूसरा जो है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, ही इज जस्ट एग्जिस्टिंग देयर. और एक ऐसा भी होगा आपकी फैमिली में जिसको हर चीज को समझने में वक्त लगता है, कबूल करने में वक्त लगता है, उसको उस माहौल के मुताबिक चलने में लगता है. ठीक है, तो आप मेरा जो पर्सनल वो है वो यही ओपिनियन कि आप

0: अपने बच्चों को अपने साथ लेके चलें। ये मत कहें कि ये अभी छोटा है, इसको निकाल दो, इसको नहीं समझ आती। नहीं, आजकल के बच्चे दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम।
1: और जो हमारा एक नेक्स्ट एक चंक था इसी से रिलेटेड, वो आपने काफी सारी बात तो उसके अराउंड करी थी अफशा, दैट अनइक्वल इन्वॉल्वमेंट पुट्स अ डिफरेंशिएटेड काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। कि जब फॉर एग्जांपल इफ द फादर फिगर ही इज टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड एंड मदर इज लाइक मिनिमल इन्वॉल्व्ड इन अफेयर्स, तो वो कैसा इफेक्ट डालते हैं बच्चों पे? या अगर मदर जो है वो कॉग्निटिव बर्डन उसके साथ ज्यादा है, इमोशनल बर्डन उसके साथ, शी इज डूइंग टू मच इमोशनल लेबर ऑल द टाइम, कि हर चीज उसको मैनेज करनी है, एंड फादर इज ओनली पेइंग फॉर द बिल्स एंड एवरीथिंग, तो उस सिनेरियो में बच्चे कैसे बड़े होते हैं और उनके क्या इफेक्ट आता है उनके बच्चों पर? तो ये भी एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारे सामने आती है जब वो डिफरेंशिएटेड टास्क देखते हैं पेरेंट्स को करते हुए एंड नॉट शेयरिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उन पे क्या इफेक्ट आता है?
0: बेसिकली देखिए, अगर ऐसा हाउस होल्ड है जहां पर एक फादर इज द मेन हेड ऑफ द फैमिली एंड ही इज मेकिंग ऑल द डिसीजन, एंड कभी तो चलो ये होता है कि वाइफ एग्रीज, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वाइफ डजंट एग्री, एंड बिकॉज शी डजंट हैव अ से in anything, in planning, in making decisions, this creates conflict. और इसका सबसे पहला निशाना कौन होता है? बच्चे, क्योंकि because mom is angry, ठीक है, वो बोल नहीं सकती है, so she start discussing this with children, ठीक है, बच्चों को बताती है, देखो तुम्हारे अब्बू ने ये कर दिया, मुझसे तो पूछा ही नहीं. Now the child start seeing the mother as a victim,
1: exactly, yeah,
0: and the father as a very bad person. मैंने बहुत सारे घर ऐसे भी देखे हैं कि जहां पर माई कहती है नहीं बेटा, अगर आपके अब्बू ने किया है तो उनको पता होगा व्हाट ही इज डूइंग,
1: देयर माइट बी अ रीजन बिहाइंड इट
0: अब ये एक थोड़ा सा ना सॉफ्ट कंप्लेन आ गई, मतलब कंप्लेन तो है लेकिन एक सॉफ्ट साइड की कंप्लेन है. बच्चा भी कहता है अच्छा मेरे अब्बू को ज्यादा पता है या मेरे अब्बू ठीक कर रहे हैं, बिकॉज अम्मी कह रही है, और नेचुरली होता है कि व्हाट मदर सेज इज यूजुअली चिल्ड्रन एक्सेप्ट दैट, ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है अगर अब्बू कर रहे हैं, या दैट्स अ वेरी पोलाइट वे टू सेइंग दैट आई एम नॉट बीइंग इन्वॉल्वड बट व्हाट ही इज डूइंग इज इट माइट बी राइट. लेकिन फिर भी उस बच्चे को कहीं ना कहीं जरूर फील होता है कि यार अगर ये अब्बा ये कर रहे थे तो अम्मी से पूछ लेते ना, ठीक है.
1: There's one thing that has settled down in child's mind.
0: Yeah. तो फ्यूचर में वो हो सकता है कि वो बच्चा बड़ा होकर ये कहे कि आई एम द मैन ऑफ द हाउस, आई अर्न, आई विल मेक द डिसीजन बिकॉज आई नो
1: दैट इट हैज been happening in
0: my family, yeah. My dad used to make a decision, he was always right, my mom said. So I am making decisions, main family ki decisions le raha hu, main kar raha hu because I know I am right even if he is wrong. And maybe his wife is not as cooperative as his mother, theek hai, uski ammi ne to keh diya ki chalo beta abbu ko pata hai wo.
1: But that wasn't cooperation, I'm sorry, that was submissiveness.
0: Lekin ye dekho hamara culture hai. हमारे यहाँ बच्चियों को सिखाया जाता है जो मियाँ कहे वो ठीक है, ठीक है, आपने उसी के
1: लिए चला,
0: इफ इट्स रॉन्ग, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इन दीज सर्कमस्टेंसेस कम्युनिकेशंस एंड डिवाइड ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज वेरी वेरी क्रूशल, ठीक है. अगर नहीं करेंगे तो बच्चे भी वही देख के बड़े होंगे. अब जब आप अपनी वाइफ को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, उससे पूछ, या वाइफ हस्बैंड को इन्वॉल्व नहीं कर रही है डिसीजन मेकिंग में, उसको नहीं पूछ रही है, उसको नहीं बता रही है, उसको अपनी मर्जी से फैसले किए जा रही है, एंड द फादर इज बीइंग लेफ्ट आउट, द सन इज लुकिंग एट दिस, देन ही इज गोइंग टू बी वेरी, वो क्या कह सकते हैं आप, कि वो बहुत ज्यादा अथॉरिटाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा मेरे बाप की कोई इज्जत नहीं थी तो आगे मेरी भी नहीं होगी, सो आई नीड टू हैव अ फुल कंट्रोल,
1: पुट माय स्टेप फुट डाउन फ्रॉम डे वन.
0: तो वो पहले दिन से ही अपनी बीवी को दबा के रखेगा. सो आपको, हम कहते हैं ना, एक मियां बीवी और बच्चे, कहने को ये लव्स बड़ा छोटा है, अ फैमिली इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हेन यू से दैट, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व्स इन मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग फैमिली इट्स ह्यूज एंड इट्स वेरी हार्ड. इसीलिए इस्लाम में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने इतनी इतनी छोटी छोटी मुन्नी मुन्नी सी चीज को भी बयान किया हुआ है. हमारे यहाँ आमतौर पे क्या सिखाया जाता है कि अगर शौहर की नाफरमानी करोगी तो सारी रात फरिश्ते लानते भेजेंगे, ठीक है, जहन्नुम में जाओगी। क्या हमने अपने बेटे को कभी ये बताया कि अगर बीवी की बात नहीं सुनोगे, बीवी के हुकूक सिर्फ रोटी पानी छत नहीं होता, उसकी और बहुत सारी चीजें हैं, अगर तुम उनको तवज्जो नहीं दोगे तो तुम्हारा ठिकाना भी जहन्नम होगा। हम अपने बेटों को कभी ये बात नहीं बताते।
1: एग्जैक्टली, बिकॉज आफ्टर ऑल अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, और उसमें जो है वो वी डू कीप डॉटर्स एंड सन्स एट डिफरेंस, और उसमें आई थिंक अफ्रीकन कल्चर में भी थोड़ा सा द एल्डेस्ट डॉटर इज टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हाउस एज कम्पेयर टू बॉयज या रेस्ट ऑफ द सिबलिंग्स। तो वो भी एक सिनेरियो होता है जहाँ पे the eldest daughter is considered or is supposed to take care of rest of the siblings, younger,
0: वो मदर फिगर बन जाती है ना,
1: she becomes a mother figure, exactly.
0: हाँ, और इसी तरह अगर बड़ा बेटा होता है तो हम उसको फादर फिगर बना देते हैं। अब्बा के साथ तुमने खड़ा होना है, अब्बू का तुमने कंधा बनना है, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम बड़े भाई हो।
1: And sometimes in the whole scenario, they lose their own innocence and they lose their own childhood somewhere.
0: बिल्कुल, और बाज़ औक़ात होता यह है कि बड़े होने के बाद वो अपनी फैमिली से ज्यादा अपने बहन भाइयों के ऊपर उनका फोकस हो जाता exactly, है yeah. जिसकी वजह से वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को अपनी फैमिली का सुकून, अपनी फैमिली की बॉन्डिंग और वो सब खत्म हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उस सिलसिले में भी आपको एक हद दी हुई है। आपका बच्चा बच्ची, आपके बहन भाई, सॉरी, अगर वो अपने पैरों पे खड़े हैं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर देम। आप सिल्ला रहमी करो, आप बिल्कुल करो, उनके हुकूक अदा करो उनको को, लेकिन जब आपके बहन भाई अपने पैरों पे खड़े हो गए तो फिर अल्लाह ताला ने आपके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बीवी की रखी है।
1: एग्जैक्टली, अनदर फूड फॉर थॉट, व्हाट इज वन थिंग दैट एवरी फैमिली कुड चेंज दिस वीक टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप्स? आप अपनी फैमिली, इफ यू जस्ट लुक अराउंड, आप अपनी फैमिली में क्या एक ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे आप समझते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपके बेटे के साथ, बेटी के साथ, आपकी मदर के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, इट कुड गो अ नॉच अप, इट कुड बी बेटर, कोई एक ऐसा छोटा सा जेस्चर करने के साथ? तो दिस इज फूड फॉर थॉट. Do give it some time, do give it a few minutes to think around it. Or moving forward towards the end of our the Family Matters show, episode number 4, Afsha, what are we taking home from roles and responsibilities?
0: Well, agar hum roles and responsibilities ki baat karte hain to jis tarah aapne pehle kuch sawal इनके लिए छोड़े थे हमारे नाजरीन के लिए, मेरे ख्याल में अगर उस पे अगर फोकस किया जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी फैमिली में कौन सा ऐसा बच्चा है जो खामोश है, या कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आज तक हमने शेयर नहीं की। लेकिन आज हम बैठ के सोचें तो अगर हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते तो उसका इम्पैक्ट क्या बनेगा हमारी फैमिली पे। आज अगर आप बैठे और आप ये देखें कि इतने अरसे में आपने ये काम नहीं किया एज अ फैमिली, तो आप वो काम कर लें। आपने अगर ये देखा है कि आज आपने कभी खाना नहीं बनाया, या आपने कुछ बारबेक्यू टाइप, आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है, गर्मी बहुत है वैसे, लेकिन अगर आप कोई अपनी फैमिली के लिए कोई छोटा मोटा खाना बना लें, आप सब मिलकर बैठ के खा लें, तो उससे भी आपका जो बॉन्ड है, जो वो है, वो एक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, वो एक नई चीज होगी आपकी। शायद आपकी फैमिली भी आपसे एक्सपेक्ट ना कर रही हो कि आज अब्बू या अम्मी या जो फारिग है या वो खाना बनाएगा। तो कहने को ये है कि अगर कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फैमिली बॉन्डिंग। तो हम सिर्फ इसको नहीं कह सकते कि आपने कम्युनिकेशन अच्छी कर ली तो इसका मतलब है कि सारे मसले हल हो गए, या अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है तो आपस में डिवाइड कर ली तो आपकी कम्युनिकेशन भी बेहतर हो गई। ऐसे तो नहीं होता। उसमें तो जारी बात है आपने दोनों चीजों को लेके चलना है। जिस तरह हमने अभी बात की कि फैमिली कहने को तो एक बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सा लफ्ज है, ठीक है, लेकिन उसकी बात उसके अंदर डेप्थ बहुत ज्यादा है। उसमें आपके पास बहुत सारी चीजें एक अच्छी फैमिली को बनाने में काम करती हैं।
1: एंड वन थिंग दैट आई ट्रूली सपोर्ट इज दैट विद ऑल द चेंजिंग टाइम्स, ऑफ कोर्स वी डू वांट टू स्टिक टू आवर कल्चर, लेकिन जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है वैसे ही कल्चर, लैंग्वेज, आपके रिलेशनशिप, एवरीथिंग अराउंड फैमिली इज इवॉल्विंग. ठीक है, तो डोंट बी रिजिड अराउंड दीज थिंग्स. गिव सम स्पेस टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स. आप अपनी घर के सब लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें, उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करें, ताकि उनके ऊपर से मेंटल बर्डन, उनका फिजिकल बर्डन थोड़ा सा कम हो सके और दे ऑल्सो गेट सम चांस टू मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ करियर वाइज और देयर ओन पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट और देयर ओन पर्सनल ग्रूमिंग, वट एवर इट इज दैट दे वॉन्ट टू डू. So today we have learned that every family has responsibilities, but every family can decide how these responsibilities are shared. They are different for every household. We discussed nuclear families, single parent families, extended families, equal partnerships, chosen families, faith and culture, gender roles, children and responsibility, money and emotional labor. अफशा कोई ऐसी चीज है जो हमने अभी तक छोड़ दी है?
0: अभी तो अगर हम इस डिस्कशन करें तो ये तो बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है. अगर हम बोलना शुरू कर दें जैसा हम बोलते हैं तो मेरे ख्याल में अगले चार दिन भी हम बोलते रहेंगे.
1: Yes,
0: लेकिन हम लोग चूंकि सिर्फ मेन पॉइंट्स को टच कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ वो मोटे मोटे पॉइंट्स को उठा रहे हैं जो कि आजकल या वैसे एक बड़े सामने आते हैं जो कि बेस करते हैं फैमिली की बॉन्डिंग पे, फैमिली के प्रॉब्लम्स पे, फैमिली के उस पे हम ज्यादातर उसमें ही लेके चलते हैं. तो आज का हमारा जो मौजू था वो तो फैमिली मैटर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे था. तो आप लोग जरूर हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा, हमें लाइक डिसलाइक सजेशंस ये जरूर दीजिएगा. और नेक्स्ट वीक
1: 4077794818222 इज द नंबर दैट यू आर गोइंग टू कनेक्ट अस विद. एंड देन अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे काइंड, स्टे कनेक्टेड, शेयर द वर्क, शेयर द केयर, एंड रिमेंबर अ फैमिली इज नॉट बिल्ट बाय वन्स पर्सन एफर्ट, इट इज बिल्ट बाय एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन. वी आर गोइंग टू कम अप विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द फैमिली मैटर्स शो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, take care and Allah Hafiz.
0: Allah Hafiz.
2: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: अगर आप अपने इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इंस्पायर एफएम की टीम से रابطہ कीजिए. फोन करने के लिए 01582481810 या फिर ईमेल कीजिए info@inspirefm.org. इंस्पायर एफएम, आपका अपना रेडियो स्टेशन.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that No Comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings@crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير, that whoever is deprived of gentleness is deprived of good.
3: Looking for a school where your child can grow, achieve, and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen, and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease, and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
11: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
12: But
11: it costs £10 per inch.
12: And that's too expensive?
11: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
12: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
13: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now midnight.
15: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.